FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजते हैं, थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण

0: छह को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे हनुमान, हे संकट मोचन, हमारे भी कष्ट हर लो।

राधे तुम्हारे रूप में बसते हैं चारों धाम, राधे तुम्हारे रूप में बसते हैं चारों धाम, तुम्ही बरसाने की सुबह, तुम्ही वृंदावन की शाम।

भगवान के हर फैसले में खुश रहिए, क्योंकि प्रभु वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए हे मन, प्रभु चरणों में सदा सेवा कर।

ईश्वर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा मन छोटी बातों से विचलित होना छोड़ देगा, उसी दिन तुम सच में समृद्ध कहलाओगे।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आज अपने सुरों से शिरकत की राजन साजन मिश्रा, नरेश मल्होत्रा, लता मंगेशकर, हरिहरन व अनुराधा पोडवाल ने। इन्हीं सुरों के साथ वंदना कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए हैं मानसिक विकास। आलेख श्री अजय शर्मा का है, वाचन किया है राखी कटारा ने।
1: बालक के सर्वांगीण विकास के 5 आयाम हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार इनका संबंध पंच कोशों से है, जैसे अन्नमय कोश का संबंध शारीरिक विकास से, प्राणमय कोश का भावात्मक विकास से, मनोमय कोश का मानसिक विकास से, विज्ञानमय कोश का चैत्य विकास एवं आनंदमय कोश का संबंध अति मानसिक विकास से है। मनोमय कोश में मन तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां मानसिक शक्ति के निमित्त कार्य करती हैं। मानसिक विकास को जानने के लिए हमें मन क्या है इसका समझना आवश्यक है। भारतीय दर्शन के अनुसार मन समस्त इंद्रियों का सहायक है तथा सुख दुख की अनुभूति इसके माध्यम से होती है। शिशु जब निकटवर्ती पर्यावरण के संपर्क में आता है और अपने ऊपर उसके प्रभाव को अनुभव करता है, तब उसका मानसिक विकास प्रारंभ हुआ समझा जाता है। अर्थात बालक में समझ एवं चेतना का उत्पन्न होना उसके मानसिक विकास के लक्षण हैं। मानसिक विकास में समस्त मानसिक क्रियाएं, संवेदन, प्रत्यक्ष, ज्ञान, चिंतन, तर्क और स्मृति आती है। मानसिक विकास की गति प्रारंभ में तीव्र होती है, शनि शनि धीमी होती जाती है। सामाजिक स्थिति का प्रभाव भी बालक के मानसिक विकास में पड़ता है। मानसिक विकास को

0: प्रभावित करने के अनेक कारक हैं, जिनमें से एक अनुवांशिकता है। साधारणतया बुद्धिमान माता पिता की संतान भी बुद्धिमान देखी जाती है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि ही हो। दूसरे पर्यावरण भी इसे प्रभावित करता है। अच्छे माता पिता की संतान को बुरा पर्यावरण मिलने से विकास अवरुद्ध होता है। दूसरी ओर अच्छा पर्यावरण उन बालकों में भी सुधार करता है जो वंशानुक्रम से मंद बुद्धि हैं। मानसिक विकास के दो मुख्य सिद्धांत हैं, एक क्रमिक विकास, दूसरा सम विकास। क्रमिक विकास के अनुसार प्रत्येक विशिष्ट गुण के विकास के लिए एक निश्चित समय होता है, उसी समय में उस गुण का विकास संभव है। दूसरा मत ये भी है कि किसी भी मानसिक क्रिया का विकास कोई निश्चित समय नहीं होता, जिसमें जन्म से ही सभी विशेषताएं रहती हैं, उनका विकास पर्यावरण के संपर्क से एक साथ होता रहता है। परिवार के वातावरण का भी बालक के मानसिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दुखद एवं कलहपूर्ण वातावरण में विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके विपरीत परिवार का शांत और सुखद वातावरण मानसिक विकास को गति देता है। सामाजिक स्थिति का प्रभाव भी बालक के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जिस परिवार की सामाजिक स्थिति उच्च है, उसके बालक का विकास अधिक होगा। टर्मेन के परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभाशाली छात्र दरिद्र क्षेत्रों से नहीं बल्कि धनी क्षेत्रों से आते हैं। शिक्षित अभिभावकों के बालकों का मानसिक विकास अपेक्षाकृत तीव्र होता है। इसके अतिरिक्त बालक का मानसिक विकास विद्यालय, शिक्षक, शारीरिक स्वास्थ्य एवं समाज द्वारा भी प्रभावित है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अतः पौष्टिक खाद्य पदार्थ केवल शरीर के लिए ही नहीं मन को भी पुष्ट करते हैं। बालकों के विकास हेतु कुछ ऐसी समस्याएं उन्हें दी जाएं, कुछ ऐसे प्रश्न उन्हें दिए जाएं जिन्हें हल करने में उन्हें अपनी सूझबूझ एवं बुद्धि का प्रयोग करना पड़े। इससे बालक चिंतन और तर्क करना सीखेगा। उन्हें नए नए प्रयोग करने को बाध्य करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बालकों में कहीं इस प्रकार का दंभ न हो जाए कि उनका मानसिक विकास बहुत है, इससे स्वस्थ विकास अवरुद्ध हो जाता है। उनके मानसिक विकास की दृष्टि से सबसे आवश्यक तथ्य है कि वे जिस स्थिति में हों उन्हें स्वीकार किया जाए। दुर्बल बुद्धि से सामान्य बुद्धि के बालकों जैसे मानसिक विकास की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। हमें अपने बालकों पर व्यर्थ का दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि प्रेरणा और प्रोत्साहन से उनका विकास के लिए गतिवान किया जाए।
1: चिंतन बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए थे मानसिक विकास। आलेख श्री अजय शर्मा का था, वाचन किया था राखी कटारा ने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान पाठ। स्वर लक्ष्मी शंकर रामकृष्ण चंद्र जी के हैं, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से लिए कुछ संगीत बदंश। स्वर लक्ष्मी शंकर और रामचंद्र चंद्रेश्वरी के थे। संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसका अनुप्रसारण लखनऊ केंद्र से करेंगे। समय रहेगा रात्रि 10 बजे से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे पखावज वादन। कलाकार होंगे कृष्ण गोपाल शर्मा। समय रहेगा रात्रि 10:30। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे संध्या 6:15 से। आज इस कार्यक्रम में विषय लेकर आएंगे मादा पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और समाधान। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम संध्या 7:05 से आप सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में ब्रज लोक कथा में विषय रहेगा लड़की की चतुराई। कथाकार होंगे अशोक कुमार। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से।

बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 पर। सरला कपूर की गाये ब्रज लोक गीतों का आनंद लीजिएगा दोपहर 12:30 से। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का समय 11:00 रहेगा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 10:00 प्रसारित किया जाएगा। विविधा यह कार्यक्रम 9:30 से आप सुन सकेंगे। 9:00 होगी हिंदी वार्ता, विषय लेकर आएंगे बाल साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सरोकार। वार्ताकार होंगे राजीव कुमार सक्सेना, आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। सुबह 6:50 से आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। ब्रज माधुरी कार्यक्रम 7:31 से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आबोहवा 9:25 से आप सुन सकेंगे।

संध्या वंदन, संध्या 6:45 से आप सुनेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 पर आप सुन सकेंगे।

0: गीत, बात और एसएमएस श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से प्रसारित किया जाएगा। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुन सकेंगे। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। मनी टॉक यह कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। मंथन यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात्रि 9:45 से। ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय लेकर आए हैं अरहर की उन्नत प्रजातियां और बुवाई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, पूर्व में अरहर की खेती को अधिकतर असिंचित क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में करते थे, परंतु इस फसल की शीघ्र पकने वाली अल्पकालीन प्रजातियों के विकास के साथ ही अरहर की खेती सिंचित क्षेत्रों में अरहर गेहूं फसल चक्र में सफलतापूर्वक की जा रही है। जहां तक इसकी खेती के लिए खेत का सवाल है, तो जिसका पीएच मान 5 से 8 के बीच हो, जल निकास की उचित व्यवस्था हो, अच्छी मानी जाती है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचने के लिए किसी खेत में लगातार कई वर्षों तक अरहर की खेती नहीं उगानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। खेत की एक गहरी जुताई करने के बाद 2-3 बार हैरो चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है। बुवाई से पहले ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि खेत में बुवाई के समय पर्याप्त नमी है या नहीं। जहाँ तक अरहर के बोए जाने का समय का सवाल है, तो अरहर के बाद गेहूं अगर खेत में बोना है तो इसके लिए आपको शीघ्र जो तैयार

0: होने वाली जो प्रजातियां हैं उनकी बुवाई की जाती है, जो कि 140 दिन या 145 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो इनकी बुवाई का सर्वोत्तम समय रहता है मई के दूसरे पखवाड़े से लेकर के जून के पहले पखवाड़े तक। और अरहर की बुवाई समय से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसमें विलंब किया तो बुवाई विलंब से करने के बाद जो आप इसके बाद गेहूं उस खेत में लेंगे तो उस फसल पर विपरीत असर पड़ता है। तो इसलिए बुवाई समय से की जाए और अरहर की शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं उनको लाइन में बोना है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। इसके बाद बात आती है उर्वरक के प्रयोग की। अरहर एक दलहनी फसल है, इसे नत्रजन की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल से नत्रजन शोषित करके अरहर की फसल को पहुंचाते हैं। परंतु बुवाई के 40 से 45 दिनों तक, जब तक के जड़ों में जीवाणुधारी गांठों का विकास नहीं हो जाता है, उस समय तक इनको नत्रजन की जरूरत पड़ती है और ये नत्रजन 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। इसके अलावा फास्फोरस 45 से 50 किलोग्राम और पोटास 20 से 25 किलोग्राम, साथ ही आप 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे तो उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। इसके साथ ही चूंकि ये दलहनी फसल है और इसकी गांठों में इस तरह की विशेषता होती है कि वायुमंडल से नत्रजन शोषित कर सके, तो राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित करने के बाद ही इसकी बुवाई सुबह या शाम में करनी चाहिए, छाया में विशेष रूप से करनी चाहिए। इसकी जो अल्पकालीन जो प्रजातियां हैं, प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि 130 से 140 या 145 दिन में तैयार हो जाती हैं, उसमें है विशेष रूप से एक किस्म है उपास 120, अच्छी किस्म है, 12 से 15 कुंटल तक इससे उपज ली जा सकती है। इसके अलावा है मानक किस्म है, 18 से 20 कुंटल तक पैदावार देती है। पारस है, 15 से 20 कुंटल तक पैदावार मिल जाती है। पूसा 992 है, 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिलती है। तो AL15 है, कई ऐसी किस्में हैं जो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार और अब जो आपको मिल जाए उनके द्वारा आप बुवाई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
1: खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए थे अरहर की उन्नत प्रजातियां और बुवाई। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में होंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मजरूह की शब्द रचना को हमने लिया था फिल्म शमा परवाना से। इस गीत को अपने सुर दिए सुरैया मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने।

शैलेंद्र की शब्द रचना को संगीत बेद किया शंकर जय किशन ने। फिल्म श्री 420 से लिया ये गीत। अभी आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश व साथियों के सुरों में।

0: अनजान की शब्द रचना को आपने सुना फिल्म याराना में, सुर दिया था किशोर कुमार ने। इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वे खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
4: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि

0: मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाए। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पक्षीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली

0: में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने छह मंदिरों की स्थापना हुई थी जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: अपनी तय की हुई जगह तक न तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनने वाली सभी भैया बहनन को चंद्रा खत्री जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। साथियों, गर्मी तो अपने चरम पर है, लेकिन या अधिक को महीना जो है ना, या में श्रद्धालु की बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। बिल्कुल, चाहे वो परिक्रमा 84 कोस की हो, या फिर हो वृंदावन की, या फिर गोवर्धन की। श्रद्धालु सुबह सुबह उठते हैं और परिक्रमा देते हैं, या फिर शाम को जावे हैं। 6 बजे के बाद खूब लंबी कतार लगे हैं मंदिरन में, खूब फूल बंगला सज रहे हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं और श्रद्धालु मंत्र मुग्ध है रहे हैं। और यही 84 कोस परिक्रमा जो है ना, या में हमारे ब्रज के ही साथी ना आए, खूब दूर दूर से आए हैं सब श्रद्धालु। तो साथियों, या ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा में मंदिर आवे हैं ना, बद्रीनाथ केदारनाथ के, या को बड़ो ही महत्व है। तो यहाँ की जानकारी हम आपको दिला रहे हैं बहन रश्मि शर्मा से। आओ हम सभी जाने या को महत्व।

जय श्री कृष्णा, जय हो ब्रज धाम की, जहाँ हर कण में कान्हा की लीला बसी भई है, जहाँ वृक्षन की पत्ती से गूंजे है राधा नाम की मधुर धुन। ब्रज की यह 84 कोस यात्रा केवल परिक्रमा नहीं है, यह आत्मा को ब्रह्म से मिलन है। और आज हमारी यात्रा पहुंच रही है गांव खोह में।

टाकोली गांव से 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में खोह गांव स्थित है। गांव में श्री बांके बिहारी, श्री राधा कृष्ण, श्री महादेव और श्री हनुमान मंदिर दर्शनीय हैं। कभी श्री राधा कृष्ण जी सखीन के संग खेलते भए श्री कृष्ण जी अंतर छिप गए तो श्री राधा जी और सखी गणन ने श्री कृष्ण को नाए पाए के वे कहन लगी खोए गए और या प्रकार सो रुदन करन लगी। तो यही कारण यह स्थान को नाम पड़ गयो खोह। खोह के समीप ही कछु और

नाम हैं जिनसे यात्रा निकसे है, जैसे कि मुनाका, डिकचौली, कल्याणपुर, चुलहरा, उदयपुरी, भ्यारी नगला और क्यारी को नगला। भ्यारी ते 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में क्यारी को नगला है। सखी सायंकाल के अंधकार में डरती भई, हे कृष्ण हे प्राणेश्वर, हमें यह कार्य अंधकार में डर लग रहे है, हमें यह स्थान ते सुरक्षित स्थान पे यानी हमारे गृह तक पहुंचाए दो। उनकी यह प्रार्थना के संग ही यह स्थान पे एक अलौकिक प्रकाश प्रकट भयो और यह स्थान से सभी सखी सकुशल अपने अपने गृह पहुंच गई। सखीन द्वारा कार्य काल सोन डरवे के कारण यह स्थान को नाम कायरी का नाम पड़ गयो। और अब यात्रा पहुंची है आदि बद्रीनाथ और जटेरी गांव की ओर।

अलीपुर से 1.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी दिशा में आदि बद्रीनाथ स्थित हैं। यह स्थान के निकट जटेरी गांव भी दर्शनीय है। यह स्थान को प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहारी है। यह स्थान के चारों माओ छोटे छोटे पर्वत स्थित हैं। हिमालय पर्वत को सो सुंदर दृश्य यहाँ को अति मनोरम प्राकृतिक दृश्य आपस में तुलना करवे पे समान ही लगे हैं। कबू श्री नारायण जी जब यहाँ तपस्या कर रहे तो वह समय बिनकी तपस्या को भंग करवे के काजे देवराज इंद्र ने कछु सुंदर अप्सरान को यहाँ भेज दियो। श्री नारायण जी ने यह घटना जान के अपनी बाई जांग से अनेक अप्सरान को उत्पन्न करके इंद्र को घमंड चूर कर दियो। तपोवन के दक्षिण दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत, पश्चिम दिशा में केशव पर्वत और उत्तर दिशा में निषाद पर्वत और पूर्व दिशा में शंखकूट पर्वत विराजित है। आदि बद्रीनाथ मंदिर जाते भय बाएं भाग में श्री माला देवी को मंदिर और दक्षिण भाग में गौरी कुंड और मंदिर के सन्निकट तप्त कुंड दर्शनीय है। मंदिर के भीतर क्रमानुसार सप्त विग्रह दर्शनीय हैं, जैसे प्रथम श्री बद्रीनारायण जी श्री विग्रह के एक तरफ कुबेर भंडारी, दूसरी तरफ श्री अन्नपूर्णा देवी चतुर्भुज रूप में विराजित हैं। श्री बद्रीनाथ जी के दक्षिण दिशा में ध्यानमग्न श्री उद्धव जी उनके दक्षिण दिशा में योगासन में बैठे भये हैं और श्री बद्रीनाथ बिन के पास श्री चतुर्भुज नारायण और उनके पास श्री गणेश जी और उनके पास श्री पार्वती देवी, फिर उनके पास श्री केदारनाथ महादेव, सामने वृषभ भी विराजित है। या के अलावा श्री रामेश्वर जी, श्री गंगा जी, श्री हर की पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्ग आश्रम, योग माया मंदिर, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, चंद्र सरोवर, चंदन वन, ग्वाल, पीगली वाणी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलक गंगा, नारायण पर्वत, मईनाक पर्वत, त्रिकुट पर्वत, नील घाटी, सुगंध शिला, कृष्ण कुंड, उद्धव कुंड, सिद्ध गुफा इत्यादि दर्शनीय हैं। आदि बद्री नारायण जी की यह तपस्थली कहलाए है और श्री कृष्ण की मधुर लीलान को करवे के अधिकारी केवल इनके निज जन ही हैं। अन्य अन्य देवतागण अनेक साधनन के उपरांत तो या को दर्शन ना कर पाए हैं जब तक श्याम सुंदर कृपा न कर दें। चारों ओर वृक्षंते तथा पर्वत श्रेणी से आवृत या रमणीय एकांतिक स्थल को तो दृश्य देखते ही बने हैं। यहाँ की वास्तविकता और सौंदर्य को

0: देख के बद्रीधाम ही स्फुरित है जाए है। कहमे है कि एक बार नंद आदि गोप गोपीन की बद्रीनारायण जाने की अभिलाषा भई और उनकी अभिलाषा को जान के श्री कृष्ण ने बिन सबको लेके आदि बद्री को दर्शन यहाँ करवाया हो। हिमालय में स्थित बद्री विशाल को उद्गम स्थान है यह आदि बद्री। यहाँ बद्री नारायण, नर नारायण, ऋषि कुबेर, गणेश जी, नारद जी, उद्धव जी सबको दर्शन है।
1: यहाँ पे आप लोग दो धाम के दर्शन कर रहे हो, बद्री नारायण जी और रामेश्वरम के रामेश्वर जी हैं। यहाँ पे ये जो धाम है स्वयं ठाकुर जी ने अपने माता पिता के लिए लाए। नंद बाबा यशोदा मैया को कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने मन्नत मांगी कि हमें कोई पुत्र हो जाए तो हम तीर्थों में जाएंगे। लेकिन काफ़ी समय बीत गए, जब वृद्धावस्था में आए तब जाके उन्हें ठाकुर जी मिले। और जब ठाकुर जी मिले तो कंस के भेजे गए राक्षस रोज आने लगे, वो फिर तीर्थ में नहीं जा पाए। जब ठाकुर जी कुछ बड़े हुए, कुछ शांति हुई तो एक दिन तैयारी करने लगे तीर्थों में जाने की। ठाकुर जी ने कहा, कहाँ जाओगे तीर्थ करने, इस उम्र में बड़े कष्ट हैं, पैदल चलनी पड़े, जंगल हैं, पहाड़ हैं, बर्फ हैं, मत जाओ। ठाकुर जी ने भी अपने माता पिता की परीक्षा लेनी कि देखें क्या ये जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन वो दृढ़ संकल्पित थे, बोले हम जाएंगे, जरूर जाएंगे तीर्थों में दर्शन करने के लिए। तब ठाकुर जी ने कहा, आप लोग भक्त हो, चाहोगे तो धाम यहीं पे आ जाएंगे। नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा, अगर हमारे चाहने से धाम यहाँ आ जाए तो और बढ़िया है। ठाकुर जी लिवा के लाए, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ साथ ब्रजवासी भी आए, गांव के जितने लोग थे, कहे हम भी तीर्थों के दर्शन यहाँ कर लेंगे। सबको लिवा के लाए और बिठा दिए, बोले आंख बंद करके सब लोग प्रार्थना करो, सब तीर्थों के आवाहन करो यहाँ पे। और ठाकुर जी ने अपने योग माया द्वारा समस्त तीर्थों का आवाहन किया, सबको बुला लिया यहाँ। तीर्थ भी प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी ने ब्रज में हमें भी जगह दी है। सब तीर्थ आए यहाँ, बद्री नारायण रामेश्वर जी आए, गंगोत्री जमुनोत्री, कहीं केदारनाथ, कहीं पशुपतिनाथ, कहीं काशी विश्वनाथ, तीर्थराज प्रयाग, गया कुंड, यहाँ तक कि अयोध्या, लंका के भी जो तीर्थ हैं जहाँ अशोक वाटिका वगैरह, जहाँ सीता जी रहे, सब तीर्थ आए। और ठाकुर जी ने सबको यथास्थान जगह दिया, यहाँ तक कि जो वन पर्वत हैं हिमालय में दिव्य, सामने नर पर्वत हैं, पीछे नारायण पर्वत हैं, सामने तप्त कुंड है, देव सरोवर, गंधमादन पर्वत, चमेली वन, सब कुछ लाए ठाकुर जी। जब नंद बाबा यशोदा मैया और ब्रजवासियों ने आंखें खोली तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लाला क्या ये सचमुच के तीर्थ हैं या कोई लीला है? ठाकुर जी ने कहा, ये सचमुच के धाम है, आपको दर्शन देने के लिए आए हैं, आप लोग दर्शन करो। सबने गंगा जमुना में खूब डुबकी लगाई और यहाँ तीर्थों में दर्शन किया। नंद बाबा यशोदा मैया बोले, अब क्या तीर्थ में नहीं जाना पड़े? ठाकुर जी ने कहा, नहीं, जो वहाँ जाते धाम के दर्शन करके जो फल मिलते वो यहाँ दर्शन करने पे मिल जाते हैं, अतः आप लोग यहाँ दर्शन कर लिए, आप लोग की मनोकामना पूर्ण हुई। आने वाले समय में भी जो यात्री यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, उन्हें उन्हीं धामों के फल प्राप्त हो जाएंगे। उनमें और इनमें तनिक भी भेद मत समझना, ये वही धाम है, तब से अनवरत ये धाम चल रहे हैं। जितनी मूर्तियां हैं, ये रामेश्वर जी हैं, बद्री नारायण हैं, नर भगवान हैं, गणेश जी, पार्वती मैया, स्वयं में प्रकट हैं, ये एक ही शिला में सारी मूर्तियां हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व स्वयं ठाकुर जी ने इन धाम को प्रकट करी, तब से ये धाम के दर्शन सब ब्रजवासी करते हैं, जो यहाँ आते हैं सब दर्शन करते हैं, सबकी मन्नत कामना पूर्ण हो जाती है। सामने रामेश्वर जी के दर्शन है। सबसे अद्भुत दर्शन तो ये है कि नंदी के ऊपर भोले बाबा का विग्रह है, जो कि अन्यत्र कहीं दर्शन करने को ना मिलता है। भोले बाबा नंदी के ऊपर ही यहाँ आए थे और ऐसे ही प्रकट हो गए। सबसे बड़ी बात है कि ये मूर्तियां

किसी ने बनाई नहीं, स्वयं में प्रकट है ये। और सामने पार्वती मैया के दर्शन कीजिए, ये पार्वती मैया है और ये गणेश जी के दर्शन है। आप आगे चलते हैं, ये नर भगवान है और ये बद्री नारायण जी हैं, नर नारायण। यही जो नर भगवान थे वो महाभारत में अर्जुन बने और बद्री नारायण जी कृष्ण के रूप में आए। और ये उद्धव जी हैं, ये बद्री नारायण जी को भागवत की कथा सुनाते रहते हैं। आगे आइए, यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन हैं और राधे कृष्ण के दर्शन हैं। यहाँ एक ही जगह आने पे सबके दर्शन हो जाते हैं, ऐसा तीर्थ अन्यत्र दर्शन करने को नहीं मिलता। उत्तराखंड के जो धाम है वही धाम है, यहाँ तक कि वन पर्वत कुंड जो है सब कुछ वही है। ठाकुर जी ने अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए धाम को हिला दिए यहाँ पे। वो तो माता पिता को माध्यम बनाया, आने वाले समय में हम लोगों को लाभ मिले, ठाकुर जी ने ऐसे ही धाम

0: बद्री नारायण का भंडारा है, 24 घंटा प्रसाद चलता है, कभी आओ कभी पाओ। चूल्हे की रोटी मिलेंगी, दाल चावल और खाना फ्री और रहना फ्री, कोई प्रसाद का टैक्स नहीं है। लस्सी सुबह बढ़ती है और बाल वो बढ़ता है 11 बजे तक।
1: पशुपति 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में आदि बद्री के निकट अलीपुर गांव है और खो से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में पशुपा गांव स्थित है। गांव में पहाड़ के ऊपर श्री राधा कृष्ण जी की युगल विग्रह अतीव सुंदर दर्शनीय है। पशुपा से ही 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में बरौली धाव नामक गांव स्थित है। गांव बिलोम से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में केदारनाथ को मंदिर है। पहाड़ के ऊपर श्री केदारनाथ जी, श्री पार्वती देवी और पहाड़ के नीचे कुंड के तट पे वैष्णवगण भजन करते भय निवास करे हैं, जैसो कि आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन को तैयार ब्रजवासीन को श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन यही ब्रज में श्री कृष्ण जी ने करवाए दिए, ठीक वही प्रकार श्री केदारनाथ जी के दर्शनों भगवान श्री कृष्ण ने यह ब्रज में कराए हते।
2: देखिए ये स्वयं प्रकट शिवलिंग है केदारनाथ धाम। जिस तरह से आपको केदारनाथ धाम में दर्शन होते हैं शिवलिंग के, उसी तरह से इस गुफा के अंदर भी आपको यहाँ महादेव जी के दर्शन होते हैं।
3: ये नंदी जी का दर्शन है, ये बीच में पूछ बनी हुई है छोटी सी, ये पिछवाड़ा है बाबा का, केदारनाथ का सिंहासन है ऊपर, नादिया की पीठ में गुप्पा छोटा सा, ये कान है ऐसा है वाला, ये नागिन है पूरी, ये जी नागिन का फन है उधर, और ये आगे शायद का, ये शेषनाग का फन है, ये शेषनाग का फन है। बोले भोलेनाथ की, ये भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए 4 धाम के लिए उत्तराखंड से केदारनाथ को प्रकट कराए। जो मंगाते हैं, जो लोग ने पहली बार दर्शन करते भगवान के केदारनाथ जी के, वो लोग दोबारा दर्शन पा लेते हैं।
4: लिसा है हूँ बदरपुर से। हाँ, मैं ब्रिज में आता रहता हूँ और ब्रिज में मेरा जो है ठाकुर जी ने एक सेवा सौंप रखी है, उसमें वृक्षारोपण की सेवा मैं जो प्रभु की कृपा से करता रहता हूँ। और ब्रिज मंडल की तो महिमा ही अनेक शास्त्रों में वर्णन है, जिसकी कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। ब्रिज मंडल में तो जो जीव आएगा उसका कल्याण हो जाएगा और जो इसमें आकर के शरीर छोड़ेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, निसंदेह, इसमें कोई संशय है नहीं।
1: तो श्रोताओं, आज की कड़ी संख्या 21 में आपने खोह, आदि बद्री और केदारनाथ के दर्शन करे। अगली यात्रा में हमारी यात्रा पहुंचेगी काम्य वन की ओर। तब तक के काजे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

तो अभी श्रोताओं ने जानी बद्रीनाथ केदारनाथ की 84 कोस की परिक्रमा में महत्व। तो साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ावे हैं और सुने हवेली संगीत में आज सत्यभान शर्मा की पद, रचना है सूरदास की और राग भैरव में, आओ सुने।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 8 बजते हैं, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त

0: किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नाव को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री

0: मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान, धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda, focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आ अब लौट चले। अभी आप इस फिल्म में सुन रहे थे अलका याग्निक को।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का।

0: कुणाल गांजावाला और वसुंधरा के युगल सुरों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म धूम में। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी वार्ता। आज लेकर आए हैं आपके लिए भेंट वार्ता में एक विषय, बाल साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सरोकार। वार्ताकार हैं राजीव कुमार सक्सेना और आपसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, जब भी हम बचपन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बचपन के संदर्भ में लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सोचा गया है। तो बाल साहित्य दरअसल में है क्या, उसको किस तरह समझना चाहिए? लिखने वाले तो लिखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को बाल साहित्य और एक बच्चे को बाल साहित्य और उससे भी बड़े समाज और आज के संदर्भों में जो देश काल की परिस्थितियां उसमें बाल साहित्य की जो प्रासंगिकता है, उसकी जरूरत है, वो कितनी है, ये आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्री राजीव कुमार सक्सेना साहब। साहित्य से उनका बहुत गहरा नाता है और उसमें भी बाल साहित्य और बाल साहित्य के साथ साथ बाल साहित्य की वैज्ञानिकता की पृष्ठभूमि, ये उनके चिंतन का, लेखन का और साहित्य का विषय रहा है। राजीव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार आपको भी और आपके माध्यम से आकाशवाणी मथुरा के समस्त श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार।
1: तो जब बाल साहित्य की चर्चा होती है, मैं बिना किसी लंबी भूमिका से आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो लेखक हैं, चिंतक हैं, लिखते रहते हैं, बच्चों के साहित्य में चले गए और उनके मन को कुरेदने लगे, तो ये कहां से आपके जहन में आया, कैसे?
2: देखिए, मतलब इसके पीछे मेरी सोच ये रही है कि जो हमारी सच्ची और असली पूंजी तो बच्चे हैं, और वो केवल हमारी व्यक्तिगत पूंजी ही नहीं है बल्कि पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरी दुनिया की पूंजी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूंजी को भी बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं बाल साहित्य सृजन की ओर प्रवृत्त हुआ और सोचा कि कुछ चीजें जो छूट रही हैं, जो मुझे लगा कि बाल साहित्य में आनी चाहिए और नहीं आ पा रही हैं, तो उस दृष्टि को साथ लेकर के मैंने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया। तो बाल साहित्य सृजन के पीछे सरकारी नौकरी के साथ साथ ये प्रेरणा भी रही कि भाई बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए, कुछ ऐसा किया जाए। और बच्चों के बारे में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है और वो लैटिन अमेरिका की एक बहुत बड़ी बाल साहित्यकार हुई है, लेखिका हुई है, गैब्रियला मिस्त्राल। उन्होंने ये बात कही थी कि बच्चे हमारा भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी है। तो जब तक हम अपने वर्तमान को नहीं सुधारेंगे, संजोएंगे, तब तक हमारा भविष्य भी उज्जवल नहीं होगा। तो भविष्य से पहले हमें वर्तमान की चिंता करनी होगी। तो बच्चे तो चूंकि हमारे सामने की पीढ़ी हैं, तो हमें सबसे पहले उनको संस्कारित करना होगा, उनको कुछ इस तरह की बात कहनी होगी, इस तरह से प्रेरित करना होगा कि हमारा भविष्य और हमारा समाज जो है और ज्यादा बेहतर हो।
1: जी, बच्चों को हम अक्सर जब भी चर्चा होती है तो ना समझ करके छोड़ देते हैं कि भाई चलो जब बड़े होंगे।

0: जाएंगे। लेकिन विज्ञान इस बात का साक्षी है, और आज इस तरह की रिसर्च हो चुकी है कि एक व्यक्ति का जो 95% जो ब्रेन का विकास है वो 5 साल की उम्र तक हो चुका होता है।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: जिसको हम छोटा मानने, और हमारा इस उसमें अगर हम साहित्य और अगर थोड़ा पौराणिकता में जाएं तो चाहे अभिमन्यु की कहानी हो चाहे अष्टावक्र की कहानी हो, ये हमको सिखाती है कि बचपन यहाँ इस जीवन में आने से पहले ही बचपन शुरू हो जाता है
1: जी
0: और
1: बिल्कुल,
0: हमारे गर्भकाल से ही चीजें सीखने की
1: विकसित होना
0: प्रवृत्ति
1: शुरू हो
0: है।
1: जाता है वो।
0: तो ऐसे में उनको जो चीजें हम अनायास वो हमारे आसपास रह के सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, और हम उनको इग्नोर कर देते हैं, तो इस पे तो बहुत बड़े काम की जरूरत आज के संदर्भ में पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी।
1: बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सबसे बड़ा मिथक तो ये है कि हम बच्चे को ये मान लेते हैं कि वो मतलब हमसे इन्फीरियर है या हमसे क्षमताओं में या ना समझ है, लेकिन ये एक मिथक है, ये एक भ्रम है, वो बिल्कुल झूठी और गलत बात है। सही बात तो ये कि बच्चा शारीरिक तौर पर जरूर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, उसके कहना चाहिए अंग प्रत्यंग जो है वो इतने विकसित नहीं है जैसे एक परिपक्व व्यक्ति के वयस्क के होते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर वो एक पूर्ण व्यक्तित्व का रूप धारण कर चुका होता है 4-6 साल की उम्र तक, और उसके मस्तिष्क का पूरा विकास हो भी चुका होता है। और ये कहना कि साहब बच्चों को समझ नहीं होती या ना समझ है, ये सबसे बड़ी भूल है। सही बात तो यह है कि बच्चों की समझ जो होती है कई मामलों में तो वयस्कों से भी ज्यादा होती है,
0: ज्यादा होती है भाई।
1: उनके पास इतनी जिज्ञासाएं होती हैं, इतनी कहना चाहिए कि सवाल होते हैं, दुनिया को जानने के बारे में इतनी रुचि होती है कि जितना वयस्कों में नहीं होती है, और वो बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील भी होते हैं। आप कोई भी चीज अगर उनको बताएंगे या उनकी जिज्ञासा का कोई उचित समाधान बताएंगे तो वो उसको ग्रहण करते हैं, समझने की एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनके मस्तिष्क में तमाम प्रतिप्रश्न फिर उभरते
0: जी,
1: हैं।
0: अब यहाँ थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे परिवार में भी, अब तो एक छोटे परिवार हो गए, हमारे परिवार की जो एक पूंजी होती थी बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, अब सिमटते सिमटते और दो के चार रह गए लोग, उसमें भी चारों लोग बहुत कम समय में एक साथ रहते हैं उसमें, तो
1: जी
0: भागम भाग इतनी है कि दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं, बच्चों को पालने वाले अलग हैं। अब ऐसे में कई बार बच्चों की जब जिज्ञासाएं होती है तो हमारे पास समय ही नहीं होता, और हम उसको या कई बार उसको ना समझ में आ रही इस तरह के सवाल का क्या मतलब। आपने जैसे उठाया कि इतनी जिज्ञासु होते हैं और इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो कई बार तो हम प्रश्नों को ही टाल जाते हैं, कई इग्नोर कर जाते हैं, कई
1: जी
0: बार ये लगता है
1: बिल्कुल,
0: कि शायद ये बेकार के प्रश्न है, तो उनपे बड़ा ध्यान दिए जाने की जरूरत।
1: नहीं बिल्कुल, निश्चित तौर से बच्चों की जिज्ञासाओं को, उनके प्रश्नों का, उनकी आशंकाओं का समाधान किए जाने की जरूरत है, और उससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और बच्चों को मैं समझता हूँ कि पर्याप्त समय भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारी पूंजी
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर हम उनको ही संभालने का यत्न नहीं करेंगे, उसको ही नहीं सहेजेंगे, तो हम फिर किस पूंजी की रक्षा
0: किस
1: कर रहे
0: किस
1: हैं,
0: पूंजी के
1: हम
0: लिए,
1: कमा किसके लिए रहे हैं,
0: सही
1: हम
0: बात
1: समय
0: है।
1: किसके लिए दे रहे हैं। भाई बच्चे हैं, अगर हम उनके ऊपर केंद्रित नहीं होंगे, उनको समय नहीं देंगे, उनके पास बैठेंगे नहीं, तो वो किससे अपनी समस्याओं का, अपने आशंकाओं का, अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो दूसरे रास्ते तलाश करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, और आधुनिक संदर्भों में, और हर आदमी भागम भाग में लगा हुआ है, रोजी रोटी के प्रश्नों से जुड़ा हुआ है, उसके सामने आजीविका का संकट है, हमें उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी, उससे भी ज्यादा प्राथमिकता बच्चों को देनी होगी। क्योंकि अगर एक बार हमने बच्चों को, मैंने बताया कि पूंजी है वो हमारी, वो सबसे कीमती पूंजी है, सही बात तो ये है, तो अगर हम उसको सहेज लेते हैं, तो उसको सहेजने के बाद फिर हमें बाकी प्रश्नों की या बाकी चिंताओं पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बच्चे हमारी प्राथमिकता में सर्वोच्च स्तर पे होने चाहिए, सबसे ऊपर होने चाहिए। तो चाहे जैसे भी हम मतलब समय का मैनेजमेंट करें, समय का प्रबंधन करें, लेकिन हमें अनिवार्य रूप से बच्चों को समय देने की मतलब कुछ ना कुछ सोच विकसित करनी चाहिए कि हमें कैसे भी हो समय निकालना है बच्चों के लिए।
0: बच्चों के लिए ही, चाहे कितनी व्यस्तता हो, लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: व्यस्तता बच्चों के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। बाल साहित्य के लेखन की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कवि साहित्यकार हुए, अगर हम पद्य कथा के कथाकार की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर जी की, उन्होंने चंदा मामा जो लिखी झंगोला वाली बात, तो वो एक कविता लिख करके ही अमर हो गए। अब
1: जी
0: वो एक वो समय था शायद चंदा मामा हमारे लिए बहुत दूर
1: जी
0: की बात
1: जी
0: होती थी और कुछ भी कह करके हम उसको टाल देते थे, लेकिन आज तो बच्चों के लिए चांद क्या है ये बिल्कुल खुली हुई किताब और खुली हुई तस्वीर है। तो
1: बिल्कुल
0: अब आज के समय में जो बच्चे रोबोटिक्स सीख रहे हैं, विज्ञान उनके इतने व्यवहार में आ गया है, एक छोटे से 6 इंची के मोबाइल में सारी दुनिया समाहित है, तो टेक्नोलॉजी का समय है। बाल साहित्य में क्या जो वैज्ञानिक जो पक्ष है, जो तकनीकी का पक्ष है, वो उभर के आया? आपने तो इसी पे काम किया है उसमें, कितनी जरूरत है आज इसकी?
1: हाँ देखिए, मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि तकनीक के अपने फायदे और नुकसान हैं, और बच्चे जो पुराने बच्चे थे आपने जिन

0: हवाला दिया, संदर्भ दिया कि पहले बच्चे चंदा मामा के बारे में ही मानते थे,
1: जी जी
0: उनकी
1: जी
0: कल्पनाओं से ही बड़े प्रसन्न हो जाते थे।
1: हाँ
0: लेकिन अब जब से समय बदला है, बच्चों की साइकी यानी उनका मनोविज्ञान या उनका कहिए कि बौद्धिक स्तर भी बदला है, तो अब हम उनको चंदा मामा की कहानियां या उनकी कविताएं सुनाकर तो बहला नहीं सकते। दूसरी बात यह कि चारों तरफ इतनी मशीनें आ गई हैं और ये भविष्य में और ज्यादा बढ़ जाएंगी।
1: जी
0: जैसा कि आप जानते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास त्वरित गति से हुआ है, और ये कहना चाहिए कि और भी ज्यादा, मतलब हमारी कल्पनातीत गति से भी ज्यादा जो है बढ़ेगा।
1: जी
0: तो ऐसे स्थिति में उन मशीनों को, उन टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए, उसकी समझ रखने के लिए बच्चों को अभी से तैयार करना होगा। तो उनको
1: बिल्कुल
0: हमें तकनीक से, टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। ये कहना गलत है कि साहब अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं बच्चे तो वो गलत है। हमें मोबाइल का या टेक्नोलॉजी से उनको जुड़ने से नहीं रोकना है, बस करना यह है कि उसका वो विवेक से इस्तेमाल करें, पॉजिटिव या सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल करें। उसके पक्ष विपक्ष दोनों बातें बतानी होंगी कि भाई आप तकनीक से जुड़िए, तकनीक का इस्तेमाल भी करिए, लेकिन तकनीक का सकारात्मक उपयोग करिए, नकारात्मक कामों के लिए, विध्वंसक कामों के लिए, या ऐसे जिनका समाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है उसको नहीं करना है, समाज को बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। तो बच्चों को ये समझ हमें विकसित करनी होगी कि तकनीक का लॉजिकल, तार्किक ढंग से उपयोग करना है।
1: जी
0: तो इसके लिए हमें उनके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण
1: जी
0: विकसित करना
1: तो अब
0: होगा।
1: वो काम साहित्य के माध्यम से, चाहे इस तरह की कहानियां हो, चाहे इस तरह की
0: जी
1: कविताएं हो, या इस तरह के कुछ भी साहित्य हो जिसमें विज्ञान को उस रूप में कहानी, क्योंकि कहानियों के माध्यम से हम किसी मैसेज को बहुत आसानी से बालमन में बिठा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा
1: ये
0: आपने।
1: वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कहानियां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का साहित्य अगर उनके आसपास हो तो वो शायद चीजें अब बहुत आसानी से उनको समझाई जा सकती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर उनमें विकसित होता है तो वो तकनीक का तार्किक ढंग से उपयोग करना
1: जी जी
0: जान जाते हैं और उन्हें तकनीक की समझ भी होती है। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने से पहले उनमें विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की
1: रुचि
0: जानी है,
1: उत्पन्न
0: क्योंकि अगर
1: की।
0: रुचि उनके अंदर होगी
1: हाँ
0: तो जाहिर सी बात है कि वो तकनीक से खुद ही जुड़ेंगे, अपने आप ही तकनीक की जानकारी करना चाहेंगे। तो मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के से भी ज्यादा बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने की बात करता हूं, और
1: रुचि
0: इसके लिए रोचक बाल साहित्य से ज्यादा और कोई बढ़िया चीज नहीं हो
1: नहीं
0: सकती।
1: हो सकती
0: आप
1: उसमें।
0: अगर बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का, बच्चों के मनोविज्ञान के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से रोचक कथाएं रचते हैं या गीत या कविताएं रचते हैं, तो बच्चे ना केवल उसमें रस लेंगे, मनोरंजन होगा उनका, आनंद लेंगे, बल्कि वो विज्ञान को भी बहुत ही सहज ढंग से, बजाय इसके कि उसको एक कठिन विषय मानने के, वो उसको एक सहज ढंग से लेंगे और उनकी रुचि जागृत होगी। और जब रुचि होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर एक दृष्टिकोण भी विकसित होने लगा, उसके लिए हमें कोई चिंता करने की फिर जरूरत
1: तो
0: नहीं
1: जो
0: है।
1: हमारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर है, चाहे वो जो साहित्य आ रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में आ रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा हो, उनमें भी ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं या इस तरह के कॉलम जो होते हैं, वहां बहुत लिखने की और बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। चाहे वो जैसे अपन चुटकुलों की बात करते हैं, पहले जो कार्टून आते थे, अपन जो छोटी छोटी जो किताबें आती थी चंदा मामा टाइप की, तो वहां भी उन चीजों को रोपित करने की आवश्यकता है कि जहां भी बच्चे की नजर पड़े, कहानियों के रूप में,
0: बिल्कुल
1: कविताओं
0: बिल्कुल
1: के रूप में, साहित्य के रूप में उनके सामने होना चाहिए,
0: जाना
1: घर
0: चाहिए
1: परिवार
0: उसको।
1: की टेबल पे होना चाहिए उसमें, ये आप कहना चाह रहे हैं
0: हाँ,
1: उसमें।
0: मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि प्रिंट मीडिया के जरिए और वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों
1: जी
0: के जरिए
1: जी
0: भी जो है बच्चों को, मतलब ज्यादा से ज्यादा विज्ञान की जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन उसमें भी एक लक्ष्मण रेखा है, और वो ये कि विज्ञान जो रचा जाए उस कठिन, मतलब कहना चाहिए कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत है हमें उनकी जानकारी नहीं देनी है,
1: जी जी
0: हमें
1: जी जी
0: उनको बहुत ज्यादा कठिन भाषा में हमें
1: हाँ
0: विज्ञान नहीं समझाना है,
1: जी
0: बल्कि हमें तो बहुत ही सरल सहज ढंग से विज्ञान की जानकारी देते हुए उसमें रुचि पैदा करनी है।
1: जी जैसे अपन बारिश होती है और अगर हम कोई पेरेंट्स है और उसको दिखाते हैं कि देखो ये इंद्रधनुष है और इस इंद्रधनुष के पीछे का जो विज्ञान है, तो मतलब जो व्यावहारिक जो घटना है, व्यावहारिक जो समझ
0: हाँ,
1: है, व्यावहारिक जो चीजें हो रही हैं,
0: वही विकसित करनी
1: वहां
0: है।
1: भी उनको जोड़ना पड़ेगा कि
0: बिल्कुल
1: इसके
0: बिल्कुल
1: पीछे वास्तव में ये है। अगर तुम साइकिल
0: हाँ,
1: चला रहे हो और उसको अगर मोड़ रहे हो तो उसके पीछे क्या विज्ञान है,
0: बस वो
1: उसमें
0: यही है कि जहां
1: व्यावहारिक।
0: हाँ बच्चों में जहां व्यावहारिकता का, तार्किकता का विकास हो जाता है, तो वहां फिर उनकी रुचि भी जागृत होती है, उनके अंदर जिज्ञासा भी प्रकट होती है, वो फिर तमाम तरह के प्रश्न भी पूछते हैं आपसे, आशंकाएं। सबसे बड़ी चीज है जिज्ञासा और रुचि।
1: जी।
0: अगर बच्चों में हम किसी भी माध्यम से जिज्ञासा, कुछ जानने की जिज्ञासा या रुचि पैदा कर देते हैं, तो फिर बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, द्वितीयक हो जाती हैं।
1: फिर तो वो जान ही लेगा।
0: हाँ, फिर वो बच्चे तो अपने मतलब किसी चाहे वो साहित्य हो या लेख हो या कोई भी विजुअल्स हो या बता कोई भी माध्यम हो खुद ही तलाश लेंगे।

0: हमें करना इतना है कि उनकी जिज्ञासा और रुचि को एक डायरेक्शन, एक दिशा देनी है कि वो विज्ञान और तकनीक से जुड़े, क्योंकि विज्ञान और तकनीक इस युग की नहीं बल्कि आगे की भी जरूरत है।
1: तो श्रोताओ, आप थे श्री राजीव कुमार सक्सेना जी, जो बाल साहित्य से जुड़े रहे, आज हमारे स्टूडियो में आए, कुछ जानकारी बाल साहित्य संदर्भ दी। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता में भेंट वार्ता, विषय लेकर आए थे बाल साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सरोकार। वार्ताकार थे राजीव कुमार सक्सेना, आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को है, थोड़ी ही देर में होगी जिले की हलचल।

0: का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
2: जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत से हाथरस में हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास से किया गया, जहां पर्यवेक्षक और प्रांगणकों ने जिलाधिकारी अतुल वत्स के आवास का सूचीकरण करते हुए मकान संख्या अंकित की। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में मकान सूचीकरण जनगणना कार्य के लिए 3607 प्रांगणक और 472 पर्यवेक्षक तैनात किए गए। यह अभियान 22 मई से 20 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के सभी मकानों और परिवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा। जिले में पुलिस लाइन ऑडिटोरियल में जिले की प्रभारी मंत्री और महिला कल्याण बाल विकास सेवा ये पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए। इस मौके पर BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नाटक कृष्ण लीला पर आधारित मनमोहक नृत्य व छात्र छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक पर प्रस्तुति दी। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त 225 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई और शुभकामनाओं के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास भवन सभागार में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता एवं सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय की उपस्थिति में गौर संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गौवंश संरक्षण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जनपद में सिंचाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त खंडों के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में नहरों नालों एवं नदियों की वर्तमान स्थिति, उनकी सफाई मरम्मत, जल प्रवाह अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की स्थिति तथा नगर क्षेत्रों में नहरों नदियों में गिरने वाले दूषित जल की समस्या पर गहनता से विचार करने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्त आवश्यक कार्यों व टेंडर प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने ये उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने उद्यमियों की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग बंधु समिति केवल एक औपचारिक मंच नहीं, बल्कि उद्यमियों और प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद एवं समाधान का सशक्त माध्यम है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वत्स ने EVM BVVPAT वेयर हाउस के

0: मासिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे, सशस्त्र बलों की तैनाती, अग्निशमन उपकरणों आदि व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति, पूर्ण या अपूर्ण कार्यों को अनारंभ, परियोजना की बिंदुवार समीक्षा की। विश्व हिंदू परिषद जनपद हाथरस द्वारा तालाब चौराहे स्थित कार्यक्रम स्थल पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण, कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अतुल भट्ट, पुलिस अधीक्षक चंजीव नाथ सिन्हा, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा भीषण गर्मी के दृष्टिगत पशु पंछियों एवं गौवंशों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना एक पूर्ण एवं मानवीय कार्य है। जल संरक्षण एवं जीव जंतुओं की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जा रही पानी की टंकियां नान समाज में सेवा संवेदनशीलता एवं माननीय मूल्यों को का संदेश देंगी।
1: हाथरस जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर बोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को रिस्टोर कर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में आंधी तूफान के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं वहां मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विद्युत विभाग पूरी तरह तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील महाराजगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर मनोज कुमार पांडेय ने बीते 24 मई को एनटीपीसी उजाहर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जी ने जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ उपलब्ध कराया जाए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता एवं शिकायत की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। जनपद में बढ़ रहे तापमान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी सरनीत कौर बोका द्वारा जनहित में हीट वेव लू से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की गई। जिलाधिकारी ने आम जन से सतर्कता बरतने तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक तापमान रहने पर हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर एवं खतरनाक साबित हो सकती है। विशेष रूप से वृद्धजन, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को सिर एवं शरीर को गीले कपड़े से ढककर रखने तथा समय समय पर छायादार स्थान पर विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में दोपहर 12 से 3 तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की विशेष अपील की गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोका ने बताया कि भारत जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद रायबरेली में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सर्वेक्षण करते हुए सूचीकरण और गणना का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य को गंभीरता एवं 100% सफलता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मकान गणना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, आवासीय स्थिति, संसाधनों एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, सरकारी नीतियों तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के निर्माण में किया जाता है। ऐसे में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद में नियुक्त प्रगणक और सुपरवाइजरों ने आज से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर मकानों का सत्यापन, सूचीकरण एवं गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान टीम द्वारा प्रत्येक मकान की स्थिति, उपयोग, संरचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक

0: विवरण संकलित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान कोई भी मकान छूटने न पाए, प्रक्रिया पारदर्शी व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि
1: जनगणना 2027 है, उसका द्वितीय चरण हुआ है जिसमें जो हमारे एन्यूमरेटर हैं वो डोर टू डोर जाकर हाउस की लिस्टिंग करेंगे। हाउस की लिस्टिंग यानी घर पर नंबर डालेंगे और उनको ब्लॉक के रूप में संगठित करेंगे, जिससे कि जब वो फिर से घर में जाएं तो वो प्रति घर जा पाए और कोई भी घर छूटने ना पाए। सभी से अनुरोध है कि इनके साथ सहयोग करें और जो इनके द्वारा दिए गए नंबर वगैरह हैं उसको मिटाए ना, उसको मिटाना एक अपराध भी है।
0: जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका ने बीते 21 मई को विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लेने हेतु निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बेलाभिला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों एवं समयबद्ध प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आबोहवा। विषय लेकर आए हैं पर्यावरण प्रदूषण का कृषि पर असर। आलेख व वाचन श्रीमती ललिता गुप्ता का है।
4: श्रोताओं, मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से वही संबंध है जो अन्य प्राणियों का है, परंतु मनुष्य ने अपने बौद्धिक विकास के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंध बनाए हैं। आदिकाल का मनुष्य जो अन्य जीव जंतुओं की भांति रहता था, पर्यावरण पर विशेष प्रभावशाली नहीं था, परंतु मनुष्य ने विगत वर्षों में सभ्यता एवं संस्कृति के विकल्प के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए मनुष्य एवं वातावरण ने पर्यावरण से उपयोगी वनस्पति एवं जीव जंतुओं का अधिकाधिक विकास कर अपने लिए उपयोगी बनाया है, तथा अन्य वनस्पति एवं जीव जंतुओं को या तो विकास क्रम में पीछे छोड़ दिया या उन्हें पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त कर दिया है। क्षेत्रवासियों, मनुष्य द्वारा अपनी छांट को महत्व देने के कारण पर्यावरण में नैसर्गिक भिन्नताएं उत्पन्न हुई हैं। मनुष्य एवं वातावरण के सहसंबंधों में आज से कई वर्षों पूर्व क्रांतिकारी बदलाव आए, जब मनुष्य ने कृषि करना, स्थायी आवास बनाकर रहना, जंतुओं का पालतूकरण करना और अनुपयोगी पेड़ पौधों को जैविक चक्र से बाहर निकालना सीख लिया था। कृषि के रूप में उपयोगी पेड़ पौधे ही अधिक विकसित हुए और अनुपयोगी पेड़ पौधे जैविक यंत्र से बाहर निकाल दिए गए। मनुष्य ने वनों और प्राकृतिक पेड़ पौधों के समूह को हटाकर कृषि कार्य करना आरंभ किया। हाँ, तो हाड़ौती वासियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर है, परंतु औद्योगिक विकास के कारण खेतों के स्थान पर फैक्ट्रियां बन गई हैं। गगनचुंबी इमारतों की आवश्यकता जनसंख्या वृद्धि का प्रमाण है। पढ़े लिखे नौजवान पढ़ लिख कर गाँवों में कृषि न कर वहां से पलायन कर रहे हैं। मानव गांवों में भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खेती कर जंगल में मंगल कर सकता है, लेकिन उसकी स्वार्थपरता की तब हद तोड़ देती है जब खेती की जमीन पर गगनचुंबी इमारतें व उद्योग लगाकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। आज भारत में ही प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि के वन काट दिए जाते हैं, जिससे करोड़ों एकड़ भूमि पर भूस्खलन हो रहा है। वन ठेकेदारों के द्वारा बेशर्मी से खेतों और पहाड़ियों के हरित वस्त्रों को खींचकर अलग किया जाता है, जिसके कर्णवेदी धमाकों से न केवल पत्थर का दिल ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है, अपितु वन्य जीव व खेतीहर मजदूर जो वहाँ झोपड़े बनाकर रहते हैं बेघर हो जाते हैं। जलधाराएं या तो सूख जाती हैं या अपना मार्ग बदल लेती हैं, इससे परिस्थिति की संतुलन गड़बड़ा जाता है। भाइयों, हमें कोटा की धरा पर वन संरक्षण के साथ साथ सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी जैसे सार्थक कार्यक्रमों को अपनाकर अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। विद्यालय से ही विद्यार्थी वृक्षारोपण के संस्कार को सीख जाएं और वर्तमान शिक्षा में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। रसोई गैस को सस्ती व सुलभ बनाकर पेड़ों को बचाया जा सकता है। परिवार को छोटा कर खेती की जमीन पर इमारतें बनने से रोका जा सकता है। महानगरों में गांवों से रोजगार की तलाश में आए लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को बाध्य हो रहे हैं। पर्यावरण संतुलन में खेती की मुख्य भूमिका रही है, परंतु इनके संरक्षण में बहुत देर से ध्यान दिया गया है। वनों के अभाव में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि की समस्याएं पैदा हो गई है। पहले मौसम के अनुसार ही सर्दी गर्मी वर्षा होती थी, परंतु अब तो कब वर्षा हो जाए, कब भयानक गर्मी हो जाए, आभास ही नहीं होता। इससे कभी तो अधिक वर्षा से खेती गल जाती है, तो अधिक सर्दी से फसलों को अपना ग्रास बना लेता है। वन न होने से भूगर्भीय जल स्तर में कमी आती है, साथ ही उपजाऊ मृदा बहकर

नदी नालों से तालाबों में एकत्रित हो जाती है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे तत्व तालाबों एवं जलाशयों में खरपतवार बढ़ाते हैं तथा जल स्रोतों की क्षमता भी कम हो जाती है व पैदावार में कमी आती है, जिसको हम रासायनिक खाद देकर बढ़ाते रहते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिससे वातावरण के तत्व निर्मित होते हैं, जैसे भूमि की बनावट, वनस्पति की भिन्नता, मिट्टियां, जलवायु आदि। पर्यावरण का संरक्षण कर अपने कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाएं तथा धरती माता का श्रृंगार कर उसे पादप रूपी जेवरों से सुसज्जित कर अन्न उपजाएं।

0: कार्यक्रम आवो हवा में आज का विषय लेकर आए थे, पर्यावरण प्रदूषण का कृषि पर असर। आलेख व वाचन श्रीमती ललिता गुप्ता का था। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है OB पर आधारित कार्यक्रम विविधा। आज का विषय है आकाशवाणी के 90 वर्ष, राष्ट्र निर्माण, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक विरासत की कहानी। 1936 से 1947 तक, 1947 से 1970 तक, 1970 से 2000 और 2000 से आज तक की कहानी। आइए सुनते हैं चंद्रिका कुमार की जुबानी।
1: विविधा, विविधा, विविधा।

0: श्रोताओं नमस्कार, विविधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं चंद्रिका कुमार। श्रोताओं, ध्वनि की वह यात्रा जिसने करोड़ों भारतीयों के सुख दुख, संघर्ष और उपलब्धियों को अपनी तरंगों में समेटा, आज अपने गौरवशाली 90 वर्षों की ओर अग्रसर है। वर्ष 1936 में आकाशवाणी के रूप में प्रारंभ हुई ये संस्था केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और जनसंचार की सशक्त आवाज बनकर उभरी है। स्वाधीनता आंदोलन के दौर से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक, गांवों की चौपालों से लेकर महानगरों की भागदौड़ तक और ट्रांजिस्टर से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, आकाशवाणी ने समय के साथ स्वयं को निरंतर विकसित किया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा की विभिन्न पड़ावों पर दृष्टिपात करेंगे, जानेंगे इसकी स्थापना और प्रारंभिक विकास की कहानी, स्वतंत्र भारत के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, विविध भारतीय और एफएम प्रसारण के स्वर्णिम युग की उपलब्धियां तथा डिजिटल युग में इसके नए स्वरूप और भविष्य की संभावनाएं। तो आइए आरंभ करते हैं आकाशवाणी की 9 दशकों की इस प्रेरणादायक यात्रा का पहला पड़ाव। श्रोताओं, भारतीय रेडियो प्रसारण का इतिहास लगभग एक शताब्दी पुराना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1927 में बम्बई और कलकत्ता से निजी प्रसारण सेवाओं के रूप में हुई, किंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये प्रयास अधिक समय तक नहीं चल सके। इसके बाद वर्ष 1930 में भारत सरकार ने प्रसारण व्यवस्था अपने हाथ में लेकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की। 8 जून 1936 को इस सेवा का पुनर्गठन हुआ और इसे नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की मजबूत नींव रखी। बाद में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा लोकप्रिय बनाया गया नाम आकाशवाणी भारतीय जनमानस में स्थायी रूप में स्थापित हो गया। प्रारंभिक वर्षों में रेडियो की पहुंच सीमित थी, फिर भी समाचार, संगीत वार्ताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसने लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाचारों और सरकारी सूचनाओं के त्वरित प्रसारण ने इसकी उपयोगिता और बढ़ा दी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी रेडियो जनसंचार का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा और राष्ट्रीय घटनाओं को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की यात्रा के संबंध में हमने बात की पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया से, स्वयं आकाशवाणी मथुरा के एक प्रतिष्ठित प्रस्तोता और कलाकार रहे हैं।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम।

0: मैं आपका और आज हम जुड़ चुके हैं पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया सर यानी भैया जी से। तो स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी
0: सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप आकाशवाणी से किस रूप में जुड़े थे।
1: आकाशवाणी की मथुरा में स्थापना के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे थे। यहाँ के साहित्यकार कवि ये अनुभव करते थे कि उनकी जो प्रतिभा है वो दूर दूर तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि आकाशवाणी का मथुरा में केंद्र नहीं है। तो इसके लिए एक आकाशवाणी स्थापना समिति यहाँ पर शाखा बनी और मैं उसका मंत्री था। तो हम लोग काफी समय से प्रयास कर रहे थे। राज बहादुर जी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे। उनको जब ये कहा गया कि आप भरतपुर के हैं, मथुरा में केंद्र स्थापित हो जाएगा तो भरतपुर के साहित्यकार कवियों को भी सुविधा मिलेगी, तो ये बात उनको राजनीतिक दृष्टि से समझ में आ गई और उन्होंने मथुरा में एक छोटा सा केंद्र स्थापित कर दिया। अब उस केंद्र को संचालित करने के लिए आवश्यकता थी ऐसे व्यक्तियों की जो आकाशवाणी की विधाओं से परिचित हों। तो हम आकाशवाणी के बड़े अधिकारी, महानिदेशक, निदेशक सब मथुरा आए और लोगों से चर्चा की। उन्होंने डॉक्टर बरसानी लाल चतुर्वेदी, प्रसिद्ध हास्य रस के कवि थे, उनसे चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि केवल एक व्यक्ति मोहन स्वरूप भाटिया है, कार्य को संभाल सकते हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और फिर मैं उसमें ऐसा रमता गया, क्योंकि मेरी रुचि का कार्य तो था ही। हम गांव में जाते थे तो वहाँ के कलाकारों से बात करते थे, गीत भी लिखता था, तो मेरी रुचि भी उसमें पूरी होने लगी और उलझता गया, ये समझिए कि सुलझ नहीं पाया। और मेरा अपनी रुचि के कारण ही ग्राम गोष्ठी कार्यक्रम वो इतना लोकप्रिय हुआ कि ब्रज के गाँव गाँव में कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले बहुत कम तो रेडियो सेट होते थे, फिर जो भी एक होता था तो पंचायत घर में वहाँ पर रखकर और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। तो वो कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हो गया था और उस कार्यक्रम में मेरी भूमिका भैया जी की थी। एक गोसाई जी थे और मैं भैया जी था। तो वो इतना लोकप्रिय हुआ कि मेरा नाम मोहन स्वरूप भाटिया की बजाय भैया जी हो गया और आज भी मथुरा में अधिकांश लोग मुझे भैया जी कहते हैं। ये रेडियो की देन थी।
0: तो एक बहुत बड़ा इतिहास आपने अपने नाम के साथ बताया, आकाशवाणी से जुड़ा बताया आपने। मैं जानना चाहूंगी कि आप कौन से उम्र में आकर के जुड़े थे आकाशवाणी से, क्योंकि जो आकाशवाणी है वो बच्चों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देती है, युवाओं के लिए भी देती है, बुजुर्गों के लिए भी देती है, महिलाओं के लिए भी देती है। तो आपका जुड़ाव सबसे पहले कब हुआ था आकाशवाणी से, उम्र के कौन से पड़ाव पर?
1: सन 1967 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी और मेरी जन्मतिथि 1935 है, तो उस समय मैं 32 वर्ष का था और स्फूर्ति थी। तो एक कार्यक्रम से मुझे जोड़ा गया था, ग्राम गोष्ठी, लेकिन स्टाफ नहीं था और कार्यक्रम बढ़ते गए, हम भी यहाँ करते गए क्योंकि रुचि थी। अगर नौकरी के लिए नौकरी कर रहे होते तो अपना ब्रज का जो कार्यक्रम था, ब्रज कार्यक्रम, उसके समाप्त होते ही घर चले आते, लेकिन नाटक, नौटंकी, लोकगीत, ये सारे कार्यक्रम में स्टाफ था ही नहीं, तो वो सब किए तो अनुभव भी हुआ और आकाशवाणी के कार्यक्रमों की पूर्ति भी हुई।
0: यानी कि आपकी एक रुचि भी थी और इधर रोजगार भी आपको मिलता रहा, दोनों चीजें यहाँ पे संयोग बन गई। और आपने बताया कि आपकी जो जन्मतिथि है वो जन्मतिथि और इधर 90 वर्ष आकाशवाणी के, यानी कि दोनों का 90 का जो समता बैठ रही है वो एक बहुत ही अच्छा संयोग बैठ रहा है। और आकाशवाणी मथुरा का जब नाम आता है तो आपका नाम स्पष्टतः हो जाता है एक मजबूत स्तंभ के रूप में। तो आपका जो अनुभव रहा इन 90 वर्षों का, आकाशवाणी को लेकर हो चाहे अपने जीवन को लेकर हो, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं से, महिलाओं से, या जो ऐसे लोग होते हैं जो बीच रास्ते में ही अपने सफर को छोड़ देते हैं उन्हें सफलता न मिलने पर, या फिर काम को स्टार्ट ही नहीं करते, इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी एक समय स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था। ग्राम गोष्ठी का अर्थ था कि ग्राम से जुड़ी हुई बातों की चर्चा गोष्ठी में हो, तो खेती की भी चर्चा होती थी, जो कृषि विशेषज्ञ होते थे यहाँ के उनको बुला के वार्ता कराई जाती थी। और एक उपयोगी माध्यम था रेडियो, वो आज नहीं है। आज रेडियो सेट नहीं है लोगों के यहाँ, अगर है तो रेडियो सुनते नहीं, और आकाशवाणी से वो जो कार्यक्रम होते थे वो सैकड़ों लोग सुनते थे। अब तो घर घर में है तो बच्चे तो सुनते नहीं है कि खेती संबंधी कार्यक्रम, तो एक बहुत बड़ी जो रिक्तता थी वो आकाशवाणी ने पूरी करी थी।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और जो हमारी ब्रज की लोक संस्कृति है उसको लेकर

0: हम सभी आगे बढ़े, चाहे वो किसी भी वर्ग स्तर के हो, बच्चे हो, युवा हो, महिला हो, तभी हम अपनी संस्कृति को समृद्ध बना सकते हैं। आपने हमसे कार्यक्रम में बात की और अपने 90 वर्षों की जो यात्रा थी वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमसे कही, करबद्ध आभार प्रकट करना चाहेंगे आप?
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओ, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं वाले देश को एकता के सूत्र में बांधने में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने व्यापक प्रसारण नेटवर्क के माध्यम से आकाशवाणी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक कला, संस्कृति और जीवन शैली को एक दूसरे तक पहुंचाया, जिससे राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक जुड़ाव को बल मिला। आकाशवाणी ने विश्वसनीय समाचारों के जरिए जनता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, संसद की गतिविधियों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इससे नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी। शिक्षा और जन जागरण के क्षेत्र में भी इसके कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी रहे। कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौढ़ शिक्षा से जुड़े प्रसारणों ने जन सामान्य के ज्ञान वर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेशों के प्रसारण ने देशवासियों में साझा राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ किया। आइए आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी मथुरा के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम राम गोपाल से ओपी सिंह की बातचीत, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी को दिया।
1: आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी और आकाशवाणी मथुरा में सहायक निदेशक के तौर पर कार्यरत रहे श्री राम गोपाल जी, जिन्होंने एक लंबा जीवन आकाशवाणी के साथ इस रूप में जिया कि बहुत सारे प्रसारणों का, बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण किया, निर्देशन किया। तो हम चाहेंगे कि आप कैसे इस आकाशवाणी से जुड़े, कैसे आए और इस आकाशवाणी ने आपको क्या दिया, जो संस्मरण आपके साथ हैं हमारे श्रोताओं के साथ बांटे।
3: सभी श्रोताओं को नमन करता हूं। वर्ष 1988 में मैं आकाशवाणी में आया
1: जी।
3: इससे पूर्व मैं केंद्रीय सचिवालय संवर्ग में सहायक अनुभाग अधिकारी के तौर पर काम करता था। रुचि उस समय भी थी आकाशवाणी में, क्योंकि मैं कार्यक्रमों को सुनता था और जब तक भाग भी लेता था। और यही वजह थी कि केंद्रीय सचिवालय की सेवा में रहते हुए भी मैं आकाशवाणी का जो आने का, आकाशवाणी के प्रति मेरा जो आकर्षण है उसको मैं दूर नहीं कर पाया। और जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं आकाशवाणी में नियुक्त हो गया और मेरी पहली पदस्थापना जो हुई वो इंदौर में हुई
1: जी।
3: सौभाग्य से ये बहुत, मैं जहां जहां रहा वो बहुत अच्छे केंद्र और स्थान रहे। जिस समय पर मेरा आगमन हुआ उस समय आकाशवाणी का अपना बहुत ही महत्व, बहुत ही लोकप्रियता लोगों के बीच में थी
1: जी।
3: और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने वो समय जिया आकाशवाणी के साथ में, जब लोग आकाशवाणी को बहुत गंभीरता से सुनते थे, मानते थे और जो प्रसारण कर्मी हैं उनको भी बहुत
1: सम्मान की दृष्टि
3: से देखा करते थे
1: जी जी जी।
3: रेडियो अपने आप में एक ऐसा प्रसारण माध्यम रहा है जिसको बंद नहीं किया जा सकता, ये लोगों के जहन में रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सेट अब इतने उपलब्ध नहीं है और ये कारों में है
1: जी,
3: बसों में है, ट्रकों में है, ज्यादातर लोग कारों में रखते हैं और फिर मोबाइल में है
1: जी, जी।
3: जिनको सुनना है तो वो मोबाइल में जब कभी देखते हैं, खासतौर से क्रिकेट कमेंट्री के लोग बहुत दीवाने हैं, वो देखते हैं मोबाइल से भी और जहां कहीं सेट उपलब्ध है
1: जी।
3: अब सेट बहुत कम रहे,
1: सेट न सही लेकिन हैंडसेट अब व्यक्ति के पास है
3: जी।
1: तो आपने तो उस युग को जिया है कि इन चीजों के साथ साथ आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं कि इससे भी परे था आकाशवाणी, लोगों को बहुत कुछ आकाशवाणी ने दिया है जिसको लोग आज अपनी स्मृतियों में जीते हैं, संजोते हैं उसमें
3: जी। बिल्कुल, जैसा कि सूचना, शिक्षा, मनोरंजन
1: जी,
3: हम ये एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि हमारे प्रसारण
1: जी आकाशवाणी के चार्टर में जी,
3: जी
1: जी,
3: कि हमारे प्रसारणों से लोगों को ये मिले। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के साथ साथ आकाशवाणी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से विकास भी दिया है
1: जी। जी,
3: आप जानते हैं कि इसको भारत सरकार ने और अन्य लोगों ने भी माना कि जब हरित क्रांति आई तो उसको माना गया कि इसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी भूमिका है। और हरित क्रांति ही नहीं, श्वेत क्रांति आई, फिर उसके बाद दूसरी क्रांति,
1: नीली क्रांति,
3: नीली क्रांति जिसको कहते हैं, मत्स्य पालन

0: पालन से संबंधित थी वो। तो ये सारी क्रांतियों को आकाशवाणी ने अपने प्रचार प्रसार से इतना लोगों में अच्छे तरह से
1: मतलब वहां सुदूर तक जन जन तक लेकर के गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी की 9 दशक लंबी यात्रा में एक दौर ऐसा भी आया जिसे रेडियो का स्वर्णिम युग कहा जाता है। वर्ष 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत ने भारतीय रेडियो प्रसारण को नई पहचान दी। मनोरंजन, फिल्म संगीत और जन रुचि आधारित कार्यक्रमों ने रेडियो को घर घर तक लोकप्रिय बना दिया। आकाशवाणी ने युवाओं, किसानों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए। युववाणी जैसी सेवाओं ने नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया। वहीं ग्रामीण और विकास परक कार्यक्रमों ने समाज को उपयोगी जानकारी से जोड़ा। हरित, श्वेत और नीली क्रांति के प्रचार प्रसार में भी आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संबंध में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आप हैं आकाशवाणी मथुरा के वर्तमान कार्यक्रम प्रमुख ओम प्रकाश सिंह।
3: सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन के ध्येयवाक्य को जीती आकाशवाणी पिछले 90 सालों से अनवरत रूप से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से कार्य करती रही है। जीवन के हर पहलू को छूती हुई, जन जन के मध्य देश की संस्कृति एवं संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी रोपती एवं संरक्षित करती यह संस्था देश की सांस्कृतिक विरासत का एक सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध हमेशा सहेजती रही है। 8 जून 1936 से लेकर 8 जून 1926 तक का यह सफर जो 90 सालों में समेटा हुआ है, गांव, ढाणी, शहर एवं जंगल, पहाड़ों, नदियों, नालों के बीच से गुजरता हुआ, कभी पतली पगडंडी पर तो कभी देश के आधुनिक एक्सप्रेस वे पर, सभी जगह मधुर संगीत के साथ झूमता गाता मिल जाएगा आपको। आकाशवाणी के प्रसारणों का यह लंबा सफर हजारों हजार समर्पित प्रसारण कर्मियों के सामूहिक उत्तरदायित्व बोध से निरंतर आगे बढ़ता रहा है। इसमें अथक मेहनत एवं निष्पक्ष ईमानदारी ने सभी को अपनी भूमिका निभाने में गौरवान्वित महसूस किया है। आज जब हम इस पड़ाव पर इसको याद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे आकाशवाणी की एक सुखद और समृद्ध परंपरा रही है। प्रसारणों का यह दौर विविध रूपों एवं रंगों से सजा रहा है, आगे भी यह यूं ही चलता रहेगा, बदलाव भी होते रहेंगे, पर रेडियो प्रसारणों का कभी कोई स्थानापन्न नहीं हो सकता। दिन, तिथि, पर्व, त्योहार, जयंती एवं विशेष आयोजन जो रेडियो की पहचान रहे हैं, इसमें जीवन की समसामयिकता एवं उपयोगिता हमेशा से रही है। इस तरह अगर हम देखें तो रेडियो जन जन के जीवन में इस तरह से समाहित है कि आप उसको चाह करके भी अलग नहीं कर सकते। लोगों के मन की बात, दिल की बात, उनके बीच की बात, उनको कभी हंसाया, कभी रुलाया, इस तरह के कार्यक्रम जो लोगों को हमेशा ये लगते रहे कि ये हमारे अपने लोगों के द्वारा ही और हमारे अपने बीच की चीज़ों को ही हम तक पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि इतने लंबे सफर में बहुत कुछ बदलाव हुए, तकनीकी बदलाव हुए, समय बदला, लेकिन रेडियो कभी लोगों के बीच से गया नहीं। रूप स्वरूप बदलते रहते हैं, आगे भी बदलेंगे, लेकिन रेडियो जिंदा रहेगा ये हम सब आज भी मानते हैं। और इस बात को हम इस तरह से रख सकते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए माध्यम चुना तो उन्होंने रेडियो को चुना, जबकि उस समय बहुत सारे और भी साधन हो सकते थे, लेकिन वो ये मानते थे कि जन जन तक भावना को पहुंचाना है, जन जन तक अपने आप को जोड़ना है या लोगों को अपने से जोड़ना है, तो रेडियो उसमें हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो इन 90 सालों के सफर में रेडियो आज भी जिंदा है, समाज में भी और लोगों के दिल में भी और मन में भी।
2: श्रोताओं, इस दौर में तकनीकी विस्तार ने भी आकाशवाणी की पहुंच को नई ऊंचाइयां दी। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और बाद में एफएम सेवाओं के आगमन से ध्वनि गुणवत्ता और प्रसारण क्षमता बेहतर हुई। ट्रांजिस्टर रेडियो के प्रसार ने आकाशवाणी को गांवों, खेतों और चौपालों तक पहुंचा दिया, जिससे ये सचमुच जन जन की आवाज बन सकी। आकाशवाणी की तकनीकी विकास क्रम और इसके प्रसारण की गुणवत्ता के विषय में हमने बात की आकाशवाणी मथुरा के सहायक निदेशक अभियांत्रिकी वेद प्रकाश से।

0: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम विविधा में। कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं देश की आकाशवाणी की जो 90 वर्ष हो चुके हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
1: धन्यवाद
0: सर। आपने देश भर के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों में एक अभियंता के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि तकनीकी रूप से आकाशवाणी ने पहले और अब में क्या परिवर्तन देखे हैं।
1: देखो चंद्रिका जी, जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, पहले हमारे जो ट्रांसमीटर की जो टेक्नोलॉजी होती थी वो एनालॉग वेस्ट टेक्नोलॉजी थी, और अब जो टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल वेस्ट टेक्नोलॉजी है। स्टीरियो का भी समावेश है, और डिजिटल वेस्ट जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम नॉइज फ्री सिस्टम है। आज हमारे श्रोताओं तक जो भी हमारी आवाज पहुंच रही है, हमारी कोशिश यही रहती है कि उसमें बीच में कोई डिस्टॉर्शन ना हो, कोई नॉइज ना हो, वो श्रोताओं तक वही आवाज पहुंचे जो जनरेट है, जो हम बोल रहे हैं बिना डिस्टॉर्शन के, बिना किसी व्यवधान के। पहले बल्ब बेस्ड टेक्नोलॉजी थी और अब मॉसफेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, यानी सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी, जो बल्ब बेस्ड टेक्नोलॉजी होती थी, उसमें कुछ विशेषताएं होती थी, कुछ उसके नुकसान भी होते थे। जैसे बल्ब बेस्ड टेक्नोलॉजी में जैसे इजी टू रिपेयर थी, उसको हम आसानी से मरम्मत उसकी कर लेते थे। उसका मतलब ड्रॉबैक ये था कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे संसाधन, मैन पावर की जरूरत होती थी। उसका एक बड़ा फायदा ये था कि वो लेस टेम्परेचर सेंसिटिव थी, टेम्परेचर का इतना बड़ा रोल नहीं था, उसकी लेस मेंटेनेंस कॉस्ट थी। अब हमारी जो मॉसफेट टेक्नोलॉजी है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी है, वो कॉम्पैक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें लेस मैन पावर रिक्वायरमेंट है, उसकी कॉस्टली है, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी, और इजी टू हैंडल है। पुरानी टेक्नोलॉजी AM बेस्ड थी और नई टेक्नोलॉजी FM बेस्ड है।
0: सर, आकाशवाणी मथुरा के प्रसारण में अभी बहुत सुधार हुआ है
1: जी
0: पिछले कुछ वर्ष में, तो हमारे श्रोता साथी कुछ एरिया के सुन पाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी एरिया के लोग हमारे FM स्टेशन को सुन पाए, क्या इसके लिए कोई प्रोग्राम, कोई योजना है हमारे आकाशवाणी मथुरा की?
1: देखिए चंद्रिका जी, जितनी भी योजनाएं हैं वो हमारे महानिदेशालय दिल्ली द्वारा बनाई जाती हैं, जहाँ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड है। वो जोनल ऑफिस के माध्यम से वो योजनाएं हमें भेजते हैं और हम उनको क्रियान्वित करते हैं। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है FM का, वो है कि FM में हमारी डिस्टेंस नहीं है। जैसे ये 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है, तो इसकी डिस्टेंस 70 से 80 किलोमीटर तक है, ये इसका ड्रॉबैक है बस। तो हमारी कोशिश ये रहती है, जो हमारी योजना होती है ना, कि हर 80 किलोमीटर के बाद एक दूसरा ट्रांसमीटर किसी दूसरे शहर में लग जाए
0: जी,
1: ताकि वहां का भी श्रोता उसे बेनिफिटेड हो सके
0: जी।
1: जैसे अभी जैसे जैसे इसमें क्या है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस कम होती चली जाती है। जैसे मोबाइल का प्रोग्राम है ना, वो गीगाहर्ट्ज पे होता है
0: जी,
1: तो गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से वहां के ट्रांसमीटर और जो टावर लगती है, आपने देखी होगी दूसरी जो टावर है, कंपनी की टावर है, वो बिल्कुल पास पास आ जाती है, और कई कई जहां जनसंख्या ज्यादा होती है ना, वहां टावर और पास
0: जी,
1: हाँ, दो दो किलोमीटर पर टावर लगानी पड़ती है।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी सर आपने हमसे साझा की हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा को लेकर के, और आकाशवाणी की तरक्की के बारे में, आगे भविष्य में जो योजना है उनको लेकर के बहुत सुंदर जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू वेरी मच चंद्रिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू। श्रोताओं, समय के साथ साथ तकनीक और श्रोताओं की अपेक्षाएं बदलती रही हैं, और आकाशवाणी ने भी स्वयं को इन परिवर्तनों के अनुरूप ढालते हुए डिजिटल युग का सफलता पूर्वक स्वागत किया है। 21वीं सदी में आकाशवाणी ने FM नेटवर्क का विस्तार किया, जिससे बेहतर ध्वनि गुणवत्ता और स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं सहित सभी वर्गों के श्रोताओं के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी। अपने अनुभव साझा कर रही हैं आकाशवाणी मथुरा की पूर्व उद्घोषिका डॉक्टर लिली खन्ना, जिनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
2: मैडम, आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
3: धन्यवाद ओपी सिंह जी, और अपने सभी श्रोताओं को मैं यही कहूंगी कि लिली खन्ना का नमस्कार, क्योंकि शुरू से यही कहती आई हूँ अपने कार्यक्रम में। आपने जो कहा जीने की बात, तो आकाशवाणी से बहुत लगाव, ये नहीं कि हम सर्विस में रहे या मेरी माँ श्रीमती विमल अरोरा वो रही, उससे पहले भी मैं रेडियो सुनती थी, लेकिन उस समय मेरा शिक्षा भी लेती थी, थोड़ा मनोरंजन की तरफ ज्यादा था, तो मुझे उसकी इतनी विशेषताएं नहीं पता थी रेडियो में, कि शिक्षा, मनोरंजन और सूचना इसका एक उद्देश्य है, और यही लेके आकाशवाणी चलता है। जब मैंने सर्विस शुरू की तब मैंने जाना कि इसमें तो बहुरंगी प्रतिभा आप अपनी दिखा सकते हैं।

0: आकाशवाणी ने भी बहुत लंबा सफर तय किया और आज जिस मुकाम पर है, तो मैं तो ये कहूंगी जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसी समय थोड़े दिन पहले ही मेरी पीएचडी हुई थी। मैं सोचती थी हिंदी में मैंने पीएचडी की है, मेरी भाषा मेरी ये, मैं अपनी देखो। लेकिन मैंने जब आकाशवाणी की बेसिक ट्रेनिंग करी और मैं जब वहाँ लखनऊ गई, वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बहुत से बहुत पढ़े लिखे सब होंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो श्रोता है वो एक प्रोफेसर डॉक्टर ही नहीं, वो एक मजदूर भी है, एक किसान भी है, और एक सफाई करने वाला या पुताई करने वाला भी है, वो आपको सुनता है। तो आप ये सोचो कि मैं बहुत क्लिष्ट भाषा बोलूं, नहीं, आपको उसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। मैं 93 में यहाँ आई थी,
1: 93 में आप आ गए, 2017 तक आप यहाँ नहीं है, तो एक लंबा कार्य,
0: हाँ लंबा समय।
1: आप एज ए उद्घोषिका आई, फिर वरिष्ठ उद्घोषिका के तौर पे आपने काम किया, तो कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम थे जो आपको एक रेडियो में जो एक अनाउंसर की उद्घोषक की भूमिका होती है?
0: उद्घोषक का काम प्रेजेंटेशन अच्छी तरह देना जिससे लोग उसको सुने, उनको इंटरेस्ट आए। जो कंपेयर शब्द है, जैसे मैंने बाल गोपाल में किया या बहनों के प्रोग्राम में किया, कंपेयरिंग ऐसी होती थी कि कोई महिला जब सुन रही हो महिलाओं का प्रोग्राम तो उसे लगे कि ये मुझसे ही बात कर रही है बस, और
1: मेरे लिए,
0: हाँ मेरे लिए, मेरे से बात कर रही है, उन्हें कोई मैं अजूबी नहीं लगूंगी, इतनी आत्मीयता से, और बिल्कुल ये सोच के कि मेरे मैं चित्र बना के रखते थे ये। हाँ बच्चों के प्रोग्राम में आपको बिल्कुल बच्चों के बीच में रहना होगा, उनकी बातें करनी होंगी। अभी अगर आपने बच्चों के प्रोग्राम कही कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आते थे और सुबह 10 बजे हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, तो माँ बाप बड़ी खुशी खुशी छोटे बच्चे को लेके आए, चलो कविता सुनाओ, अब वो नहीं सुनानी नहीं नहीं, बड़ा परेशान कैसे, तो हम तुरंत कह देते आप उधर चलिए हम अभी। फिर मैं उस बच्चे से नहीं कहती थी कि तुम सुनाओ, जो दूसरा बच्चा पुराना होता था, छोटा ही होता था, मैं कहती थी बेटा अपनी कविता सुनाना, उसने सुनाई, उस बच्चे को जोश आया, धीरे धीरे सीधा हुआ, और फिर बस यूं आके बैठ जाता था कि हम कहते अब आप सुनाओगे, गर्दन हिलती थी। हाँ तो माँ बाप वो ही देखते थे कि उन्होंने सुनवा कैसे ली उस बच्चे से,
1: वो तो मन कह रहे थे
0: कि ये तो यहाँ ऊँ कर रहा था। और मतलब ये जो छोटी छोटी, उससे बहुत लगाव मेरा, मुझे भी अच्छा लगता था बाल गोपाल में जब छोटे छोटे बच्चे दूर दूर से, इवन आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ बच्चे जो रेगुलर आते थे उनको ये पता था कि जो त्योहार या कोई जयंती है तो वो वैसी ही कविताएं लेके आते थे, छोटे छोटे निबंध लिख के लाते थे कि मैडम इसलिए हमें जरूर बुलाएंगी, इतना बच्चा आता था। मैं उनसे ये कहती थी, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, बोले हम अब सोच लिया ना दीदी कि आज तुलसीदास की जयंती है तो हम लिख के लाए। मैं वंदना कार्यक्रम से शुरू करूं सोचूं तो चाहे वो संस्कृत के श्लोकों से शुरुआत हो या फिर गुरुवाणी हो, मतलब हर चीज में एक बैलेंस आकाशवाणी ने रख के काम किया है। वो हमें भी बताया गया था कि आपको ऐसे ही ये चीजें करनी है। दूसरी चीज ये, जो पक्के श्रोता थे वो भी अगर चिट्ठियां लिखते थे तो सावन में वो उनके फिल्मी गाने सावन के आपकी लिस्ट आ जाती थी कि आपको कोई जरूरत नहीं है ये सुनवा दीजिए। लोकगीत जो अगर कोई गर्मी का है तो गर्मी के लोकगीत जो थे वो आ जाते थे कि ये सुनवा दीजिए। मतलब ये था तारतम्य हम लोगों का कि हम ये हमें ढूंढ रहे
1: सोसाइटी से ही वो चीजें चल के आ जाती
0: नहीं थी। मतलब ये रेडियो से इतना अपनापन था, मतलब श्रोता भी जुड़ते थे और उनको कार्यक्रम भी अच्छे लगते थे कि वो ये सोचते थे कि कैसे तरह से हमारा पत्र आ जाए बस, और हम बोल दें और हमारा पत्र बोल दिया जाए।
2: श्रोताओं, डिजिटल तकनीक के साथ आकाशवाणी ने इंटरनेट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार किया है। अब देश विदेश के श्रोता कहीं भी और कभी भी समाचार, संगीत तथा अन्य कार्यक्रम सुन सकते हैं। आधुनिक तकनीकों ने समाचार संकलन और प्रसारण को भी अधिक त्वरित, प्रभावी और विश्वसनीय बनाया है। श्रोताओं, अपनी 9 दशक की गौरवशाली यात्रा में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, साहित्य, कविता और नाटक जैसी विधाओं को मंच देकर इसने अनेक कलाकारों और साहित्यकारों को देश भर के श्रोताओं तक पहुंचाया है। आज बदलते संचार परिवेश में आकाशवाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पॉडकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया जैसी नई तकनीकों को अपनाते हुए भविष्य की ओर अग्रसर है। समृद्ध विरासत

तो वर्तमान की सक्रियता और नई संभावनाओं के साथ आकाशवाणी अपनी प्रेरणादायी यात्रा निरंतर आगे बढ़ा रही है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष विकास विरासत और भविष्य को यहीं विराम देते हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। विविधा के

0: प्रकाश सिंह ने। विविधा के अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे यानी चंद्रिका कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: विविधा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आलेख, स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का था। इस कार्यक्रम के संयोजक थे ओपी सिंह। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी व सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों

0: पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
0: जी
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल ठीक है।
5: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
7: वीर जोरावर की
8: जय।
7: वीर जोरावर की
8: जय।
7: जय जयरापुर, जय भारत।
8: जय जयरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
9: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
9: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म

0: और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
1: महाराज, महाराज हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
2: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
1: जी।
2: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
1: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
2: बिल्कुल,
1: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
2: जी मंत्री जी।
1: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
6: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
6: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
6: जी फरमाइए।
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
6: जी।
2: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
6: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
2: जी।
6: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
7: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
0: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
7: देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: चारों तरफ से घिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: जाओ, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
7: एक्चुअली यू आर अ फूल।
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
6: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
5: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
6: एक छोटी सी रियासत

0: इस छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT व CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अमित कुमार, साधना सरगम और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म किशन कन्हैया में।

अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म त्रिदेव से। अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: जी सर, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं प्रेम सिंह जी, आप बताएं आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: जी जी, हमें भी अच्छा लग रहा है सर, आपका फोन आया।
1: जी मैं बताऊँ, मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: जी जी
1: जी, आकाशवाणी मथुरा में कॉल लगा के बात भी करता हूँ। एक यही कार्यक्रम होता है जो हमारे आप लोगों से बात हो पाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप वाला कार्यक्रम होता है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सर।
0: आज सिसोदिया जी कार्यक्रम में बताइए क्या फरमाइश रहेगी।
1: जी सर, फिल्म का नाम है हीरो और गाने के बोले तू मेरा हीरो है।
0: सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: जी
0: बहुत
1: सर,
0: बहुत
1: थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद, शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार।
0: आदरणीय सारस्वत साहब को मेरा सादर भरा नमस्कार, प्रणाम।
1: आपका परिचय दे दीजिए।
0: सर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस पार से सर।
1: बहुत स्वागत है यादराम जी कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। आप कैसे हो सर? आपकी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: सब लोग अच्छे हैं, आप बताएं।
0: हाँ सर, हम भी आपकी कृपा से, भगवान जी की दुआ से हम अच्छे हैं सर।
1: जी जी, अच्छे बने रहिए।
0: हम भी ये चाहते हैं सर, हमारे आकाशवाणी के परिवार के जो सभी लोग स्वस्थ और मस्त बने रहे सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल यादराम जी, ऐसे ही कार्यक्रम से जुड़े रहिए, हमें फोन करते रहिए, अच्छा लगता है।
0: हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज बताइए कार्यक्रम में क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
0: फिल्म का नाम है नन्ना फरिश्ता।
1: जी।
0: नटखट नंदी लाडली तुझे देखे तेरा मामा चंदा मामा। मैं साहब अपने दो चार साथियों के नाम ले सकता हूँ, आपकी इजाजत हो तो सर?
1: लीजिए।
0: सर, हमारे चौधरी महेंद्र सिंह जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति, राजू लवानिया जी, बीरेन जी।
1: ठीक है, आप सभी के लिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
1: जय श्री कृष्णा।

0: हेलो,
1: हेलो सर,
0: नमस्कार। कौन बोल रही हैं?
1: मैं सर कोमल बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बोल रही हैं कोमल?
1: महेंद्र नगर से
0: आपका कार्यक्रम में स्वागत है। क्या करती हैं कोमल आप?
1: हमने सर 10th पास किया है।
0: अच्छा, अच्छे नंबर आए आपके।
1: हाँ
0: जी, अब क्या करेंगी?
1: आगे इंटर करने की सोच रहे हैं सर।
0: बिल्कुल, खूब अच्छे मन से पढ़ाई करिए।
1: सर आइए कॉल, मैंने आज की पहली बार लगाया ये।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: आज ही आपका कॉल लग गया।
1: हाँ सर, हमको एक गाना सुनना है।
0: बताएं कौन सा गाना सुनेंगी?
1: सर फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं, ये तो सच है कि भगवान है।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: इंद्रभान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत
1: जी। ठीक है सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी परेड में हूँ सर, और छाए में खड़ा हूँ, नर्सरी के बीच में हूँ। धूप तेज है, हवा भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सर। और दिशा मोड़ पे मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है घर घर की कहानी और
0: जी
1: गीत में बोल है समा है सुहाना सुहाना, गायक किशोर कुमार। सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब को, पूरे भाषा श्रोता को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, मथुरा में सभी उद्घोषक भाई बहनों को, हेलो एक्टर रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को सबको डिटेल कराऊ सर।
0: आपकी फरमाइश का गाना सुनवाते हैं इंद्रभान जी। बहुत
1: जी
0: बहुत
1: सर,
0: शुक्रिया आपका।
1: सर फोन शामिल किए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सब ठीक है?
1: सब बढ़िया है सर। आपकी फरमाइश क्या है, आज कार्यक्रम में जानना चाहते हैं।
0: तुम तो बड़े धोखेबाज हो।
1: सिंह
0: साजन
1: साहब,
0: चले ससुराल,
1: साजन चले ससुराल फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।
0: जी बहुत बहुत
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार सर,
0: नमस्कार,
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: स्वागत है अशोक जी कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, नमस्कार। कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल चाल हैं?
1: मैं भी अच्छा हूँ, गर्मी का मजा ले रहा हूँ। सब
0: घर में सब लोग अच्छे हैं? परिवार में
1: अच्छे हैं, आपके परिवार और आकाशवाणी परिवार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत। हेलो आकाशवाणी, आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे संजय सारस्वत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सूर्य की तपिश अपने चरम पर है और नौतपा का प्रभाव साफ सुथरा महसूस किया जा सकता है। मान्यता है कि नौतपा के ये 9 दिन प्रकृति और मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यह भी कहा जाता है कि जितनी अच्छी गर्मी पड़ती है उतनी ही अच्छी वर्षा होने की संभावना बढ़ती है। इसी उम्मीद के साथ कि गर्मी तो पड़ ही रही है, आने वाले समय में वर्षा भी अच्छी ही होगी, सुन लेते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत सा गीत। इस गीत को हमने लिया था फिल्म लगान से। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था AR रहमान ने। आवाज़ें थीं अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर और शान की। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे नौतपा के दौरान लू और तेज धूप से बचाव की। तो सबसे ज़्यादा धूप से बचाव ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। इस मौसम में अधिक पानी पीना, हल्का भोजन करना और दोपहर के समय तेज धूप से बचना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। जब भी घर से बाहर निकलें, ढेर सारा पानी पीकर निकलें। पानी को आप किसी भी रूप में पी सकते हैं, मठा के रूप में, शिकंजी के रूप में, छाछ के रूप में। और जब भी घर से बाहर निकलें तो छाता या अपने आप को पूरा कवर करके निकलें। हम इन गर्मियों में इतना ही आपसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ये दिन भी निकल जाएंगे और इन दिनों को हम अच्छे से जी सकेंगे। लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं प्यारे से गीत जो हमें कुछ ये एहसास कराएगा ठंडी ठंडी बूंदों का।

अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत और ए आर रहमान का संगीत। आवाज़ें थीं श्रेया घोषाल और उदय मौजुमदार की। फिल्म का नाम था गुरु। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में नौतपा का विशेष महत्व माना जाता है। किसान इन दिनों को आने वाले मानसून की तैयारी के रूप में देखते हैं। प्रकृति का यह सही संतुलन धरती को नई ऊर्जा और हरियाली देने का काम करता है। जब रिमझिम गिरेगा सावन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था मंजिल, शब्द रचना योगेश की थी और इस गीत को धुन से सवारा था राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओं, गर्मी का यह मौसम हमें धैर्य और सावधानी दोनों का संदेश देता है। थोड़ी सी सतर्कता हमें स्वस्थ रख सकती है। अपने आसपास के लोगों को भी गर्मी से बचाव के प्रति जागरूक करें, क्योंकि ये जेठ की गर्मी पूरे वातावरण को ही गर्म नहीं करती, हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे तन को, यहाँ तक कि हमारे पाँव को भी जला देती है।

अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, आवाजें थी पूर्णिमा और कुमार सानू की। फिल्म का नाम था कुली नंबर वन। शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, तेज धूप के बाद जब बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरती हैं तो पूरा वातावरण मानो खुशबू और ताजगी से भर उठता है। यही प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है जो हर मन को आनंदित कर देता है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। शब्द रचना गुलजार की थी और इस गीत को धुन से संवारा था खय्यम ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत गाने सुहाने का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और धूप से बचाव करते रहिए। ये आकाशवाणी।

वाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

हिसाब थोड़ी है। अब तुम ढूंढोगे मेरे इस गजल का जवाब, ये मेरे दिल की आवाज है, किताब थोड़ी है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमने तो अपने दिल की बात कह दी और आपके दिल की बात भी हम तक पहुंच चुकी है आपके संदेश के माध्यम से। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। श्रोताओं का पहला संदेश 11:45 का हमें मिला है। राजेश सावले, पाटिल राजदीप, राजेश राजी, राजेश शीतल राजेश का, छत्रपति संभाजी नगर से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इर्दीश नूरू मीना, इरफान मीना कासिफ का। अगले संदेश करता है अंबा चौकड़ी छत्तीसगढ़, रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। आप हैं सनावत से यूनुस खत्री, नूरू मीना, इद्रिश शफी। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं राजनगर मधुबनी बिहार से, राजकुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव और मित्रगण। छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत, सर्वजीत, सुधांशु कुमार गुप्ता। आप हैं सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वदर सानदी, कल्पना, जाफराबाद कालेगांव से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश छत्तीसगढ़ से। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। चंडीगढ़ से हमें संदेश लिख भेजा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल, जयवीर, अमनदीप, कालका, शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये पहला गीत। मुकेश और लता मंगेशकर की युगल आवाजें हैं। फिल्म का नाम है गोरा और काला। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

अभी आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था गोरा और काला। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब पढ़ लेते हैं कार्यक्रम में अगले संदेश जो आपने हमें भेजे हैं। साई बिहार रामपुर उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, श्रेय, अनन्या, ऐश्वर्या और कुश। प्रोग्राम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है कारण और नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा ने। छत्तीसगढ़ से हमें संदेश मिला है नितेश कुमार, देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत का। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा का संदेश मिला। मौताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्ना माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार। दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र नोखेलाल का संदेश मिला। गणेशपुर गंजडुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा सरफराज, गुलफराज बेबी मुस्कान। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर का संदेश मिला। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलवेन और राजेंद्र। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक, केथल हरियाणा से मधु नायक का संदेश मिला। मोहम्मद यासीन अंजान, साइना हसन, बाबू मिक्रा, नवात, बेबी चाहत, गिरिडीह झारखंड से। फातेमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से हमें संदेश लिख भेजा है जुनेद मुजावर, सबीहा मिखाइल और जेनेव मुजावर ने। मंजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक का संदेश। अनूपपुर मध्य प्रदेश से खड़वा जयवंती के

केवट और खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर का संदेश मिला। आप हैं धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि। आर्यनगर कोहला भिलाई से उत्तम सिंह मोरस झंगेल, अनिल कुमार अजीत, आयुष और नंदिनी का संदेश मिला। पाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक खंडवा से, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी का संदेश मिला। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म धरती से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना राजेंद्र किशन की है और इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

इस गीत की फरमाइश हमसे कर भेजी थी गंजी डंडवारा यूपी से वीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम शेख और डॉक्टर दबीरुल हसन ने। इसी गीत को सुनना चाहा था आदर्श नगर मलट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, साइना और निवान ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम, कुरावली से। आप हैं रजत मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, राजस्थान से। अगले संदेश करता हैं सप्तरंग श्रोता परिवार, कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले, पुणे से। हमें संदेश लिखा है अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल, देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, प्रियांशु और भाव्या देवांगन। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का संदेश मिला। खेल बाजार पानीपत से नरेल मल्होत्रा, लक्ष्य लाडुल, कोयल, नानक चंद्र, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविका सिक्का। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा का संदेश मिला। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। धनौली तेली बाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयान बाबू। गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया का संदेश मिला। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नहापकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहर्रेकर। धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत और क्रिस्टी पटवा का संदेश। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रबिला श्याम कुमार, आसमा, दीपक और अनुश्री। गाड़गे नगर यमतवाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और पूरा लौंकड़े परिवार। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का संदेश मिला। नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह, छिदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। मंचला रेडियो लिस्नर क्लब अकोला से के शरद पाचपो और शोभा, बेबी बैदेही, विहान, रश्मि और अभिनय पाचपुर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुबिया नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल का संदेश मिला। कार्यक्रम में अगला संदेश नाच पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, अरमल और समस्त अरहाम परिवार। सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू निषाद, तरुण यादव, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोरण महला, कोमल, किरण, कपिल, कोनाल। शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनमर, सरला, विशाल, रोशनी और बेबी प्रियांशी। छत्तीसगढ़ से श्रीवास, आयुष श्रीवास, बेबी आयुषी। नांदेड़ महाराष्ट्र से नायड़ गायकवाड़, नयानंद, ओम प्रकाश, साई गायकवाड़। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विन और विपुल कांबड़े का संदेश मिला। और आइए आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत अनुराधा।

इस गीत को सुनना चाहा था सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस ने, बेगम इसरत अकरम, रूबीना आरिज, नदीम शबीम, ममता रानी और पूनम ने। करेल बिहार से इसी गीत को सुनना चाहा था मोहम्मद आसिफ खान निकट परवीन ने। जलालाबाद वेस्ट से हमें संदेश ले भेजा है सुरेश गजग ने, जा पूनम विशाल दिशानी निमित आहूजा ने। कार्यक्रम में एक और श्रोता जुड़े हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ा से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालागढ़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुनदी भाई का संदेश मिला। कार्यक्रम में अगला संदेश बद्रा ठाकुर पथरिया मीनू मराबी लता मराबी अनुराग और अभिनव। आप हैं बद्रा ठाकुर पथरिया से।

मीनू मराबी, पंजाब से गुदर्शन शाह, लालचल उत्तरा, सुनीता समी, रजनी, आकाशदीप अनहद और पोत्रा गुरशदन।

कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है रघुनाथपुरा से लाल गिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा नूतन अमन बेबी आराध्या और लल्लू पंडित का संदेश मिला। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता कीसु ताशु अर्णव आनंद सत्यम आनंद। उत्तम नगर दिल्ली से हमें संदेश लिख भेजा है बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार अबिका सानू अर्चना कोइस्ते बस्ती पुनावले से अजय सोनवने करिश्मा अबिका और साइशा सोनवने। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल ईशान पूजा परिहार। ऑरेंज सिटी नागपुर से मंगेश इंगले संध्या स्वराज विराज बिट्ठल जाधव अनसुईया पवन राजे का संदेश मिला। महाराष्ट्र से रूपेश संगई महेश प्रगेश प्रतेश और पूरा संगई परिवार हमें संदेश लिख रहा है। नांदेड़ से प्रकाश जैन और लातूर से संगीता जैन सूरज और पीआर जैन। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पटियाल निवृत्ति हीर सागर संजय कुमार चौहान का संदेश मिला। चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी पप्पू महक सुनीता रानी आरजू पप्पू हसमुख लाल बुलबुल संजीव पूरा खुशदिल परिवार। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरून शाइना अक्सा नाजिया इब्राहिम और अदीब हसन का संदेश मिला। इसी के साथ कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस को संपन्न करने की दुर्गेश भास्कर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज की कलाकार है सरला कपूर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज की कलाकार है सरला कपूर, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक गीत सरला कपूर के ही स्वर में।

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का आनंद हमारे श्रोता ले रहे हैं इस समय आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आज की कलाकार हैं सरला कपूर, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम ब्रज लोकगीत सरला कपूर के ही स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज की कलाकार थी सरला कपूर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने

बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा

0: टेबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 MHz पर।
4: कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

0: अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा बच्चों को दें अपनी हॉबी पर पूरा करने का मौका। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता गर्मियों में सुमधुर पेय पदार्थ, वार्ताकार होंगी दीपा भार्गव। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी रेशमा अग्रवाल। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे अपराह्न 1:45 पर और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत रहेगा अपराह्न 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा काजी नजरुल इस्लाम जयंती विषय पर। इसके अलावा आज की बात होगी मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कानूनी वार्ता कोर्ट मैरिज प्रक्रिया विषय पर। वार्ताकार होंगे एडवोकेट प्रेम चौधरी। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। आज का किसानवाणी कार्यक्रम होगा मादा पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और समाधान पर आधारित। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अतुल सक्सेना। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45 पर और वृत्त साहित्यिक कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:05 पर। वृत्त साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रजलोक कथा लड़की की चतुराई विषय पर। कथाकार होंगे अशोक कुमार। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकेंगे संध्या 7:31 पर और फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि 8:00। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम News@9 सुना जा सकेगा रात्रि 9:00 और चित्रपट संगीत सुहाने तराने का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम मनी टॉक आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और मंथन सुना जा सकेगा रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण का समय रहेगा रात्रि 10:00 जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होगा कृष्ण गोपाल शर्मा का पखावज वादन, ताल होगा चौताल। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं रेशमा अग्रवाल।

भगवान को लगते प्यारे हम सबकी नजर में अच्छे हैं, सच और झूठ से नहीं वास्ता, हम बच्चे

मन के सच्चे हैं। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों को, सखी सहेलियों को, आपकी सखी आपकी सहेली रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारी बहनें कैसी हैं, उम्मीद करते हैं अच्छी ही होंगी। चलो ये अच्छी बात है। और बहनों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम वनिता लोक आज की चर्चा के साथ। बहनों, आज के समय में अधिकतर माता पिता को अपने बच्चों के कैरियर को लेकर चिंता सी बनी रहती है, यानी वो बचपन से ही सोचते रहते हैं जब उनके बच्चे छोटे होते हैं कि हम अपने बच्चे, बेटी हो या बेटा, इसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन उनको कभी कभी समझ में ही नहीं आता है कि वे अपने बच्चों को किस फील्ड में करियर के लिए तैयार करें। तो बहनों, ऐसी कन्फ्यूजन वाली परिस्थिति में कभी कभी होता क्या है कि बच्चों की रुचि किसी और क्षेत्र में होती है और उनके माता पिता उनको अनजाने में ही किसी और क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों को बहुत अधिक मानसिक दबाव झेलना पड़ता है और बदले में परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो इसीलिए माता पिता की जिम्मेवारी बनती है कि सबसे पहले वे अपने बच्चों की जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, रुचियां होती हैं, उनकी हॉबीज़ होती हैं, उनको समझें, उन पर ध्यान दें और उनकी रुचियों को पहचानें और बिना दबाव डाले उन्हें उनकी जिस फील्ड में रुचि है, चाहे वो पेंटिंग हो, संगीत हो, खेल हो या अन्य कोई गतिविधियाँ हो, उसके लिए उन्हें समय और संसाधन प्रदान करें। साथ ही साथ बच्चों को उनकी हॉबीज़ यानी उनके जो भी शौक हैं, रुचियां हैं, उन्हें पूरी करने में मदद करने के लिए उन्हें सही माहौल भी दें। बहनों, यह माहौल जो है और जो उनको बच्चों को सपोर्ट मिलता है, तो इससे बच्चों की रचनात्मकता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। ध्यान दें कि बच्चा किस काम में सबसे ज़्यादा समय बिताता है और उसे क्या करने में खुशी मिलती है। और बहनों, आज के समय में जैसा कि हम देखते हैं, हर घर में हर सदस्य के पास फोन है, तो ये सबसे ज़्यादा समस्या का विषय है। तो ऐसे में आप टीवी, फोन और वीडियो गेम में बिताए जाने वाले समय को सीमित करें ताकि बच्चों को नई और रचनात्मक गतिविधियों को आजमाने का समय मिल सके। यदि उन्हें पेंटिंग, क्राफ्टिंग या किसी वाद्य यंत्र में रुचि है, तो उनके लिए आवश्यक बुनियादी सामग्री या कम लागत वाली एक्टिविटीज से शुरुआत करें। बच्चे के शौक की आलोचना करने की बजाय उनकी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें। बहनों, होता क्या है कि अक्सर घरों में हम देखते हैं कि माता बहनें ज़्यादातर दूसरे बच्चे से अपने बच्चे को कंपैरेटिव यानी तुलना करती हैं। कहती हैं कि देखो फलाने का बच्चा, देखो इतने नंबर लाया है, या उस फील्ड में देखो बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कुंठा विकसित होती है। वह ये सोचता है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, कितना भी बढ़िया कर लूँ, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे खुश नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने बच्चे को यह समझाना है कि बेटा, बेटी, आप जो भी कर रहे हो सबसे बेस्ट कर रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर भी बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। तो बस माता पिता को उन प्रतिभाओं को निखारना है, ध्यान देना है कि हमारा बच्चा सबसे अलग है, क्योंकि हर इंसान सबसे अलग है और हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा अलग छिपी होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है अपने बच्चे पे। तो आपको सबसे पहले उसका रूटीन बनाना होगा, उनके दैनिक जो दिनचर्या है उसमें खेलने, पढ़ने और उनके जो शौक हैं उनको पूरा करने का एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा, ताकि वे बच्चे हैं जो बिना किसी दबाव के अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकें। और बहनों, सबसे अच्छा समय आपको इस समय मिल गया है क्योंकि अब चल रही हैं गर्मी की छुट्टियां, तो आप इस समय का सदुपयोग कर सकती हैं। सदुपयोग कैसे करेंगी आप, बच्चों को हॉबी क्लासेज ज्वाइन करा करके। हॉबी क्लासेज बच्चों की उम्र व हॉबी के अनुसार ही होनी चाहिए। किसी बच्चे की देखा देखी अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में कोर्सेज ना करवाएं। बहनों, कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपने बच्चे को कौन सा कोर्स करवाएं, किस उसमें डालें हॉबी क्लासेस, तो हम देखा देखी कर देते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है कि बच्चे के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या सिखाना है, तो आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, बच्चे की काउंसलिंग करा सकते हैं और अपनी भी करा सकते हैं, जिससे आपको सही गाइडेंस मिल सके। बहनों, वर्तमान में तो हमारे बच्चों के लिए कुछ भी सीखना बहुत ही सरल हो गया है, बस

है अपने बच्चे को पहचानने की और उसी दिशा में बच्चे को मोड़ने की। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे की ऊर्जा का सही इस्तेमाल होता है हॉबीज क्लासेज में, तो इससे बच्चों में एकाग्रता और रचनात्मकता भी बढ़ती है, स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है, मानसिक और शारीरिक व्यायाम भी वहां पर होता है जिससे बच्चों का चहुं ओर विकास होता है। तो बहनों, इस तरह से आप अपने बच्चों की हॉबी को पूरा करने में मदद कर सकती हैं और अपने लाडले और लाडली के हर सपने को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। तभी तो कहा जाता है, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते हैं।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से

0: नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकलें। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
0: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिए तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, आप देख ही रही हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। बढ़ता तापमान और भीषण गर्मी हर किसी को परेशान करती है। ये न सिर्फ ऊर्जा छीन लेती है बल्कि भूख और काम करने की क्षमता पर भी असर डालती है। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और सही खाद्य पदार्थों का सेवन करना सबसे अच्छा है। बहनों, गर्मियों में बार बार प्यास लगती है, पानी से भी प्यास नहीं बुझती है, तो ऐसे में हम घर पर ही स्वादिष्ट व लाभकारी सुमधुर पेय पदार्थ घर पर ही बना सकते हैं और यह घर पर बनाए गए पेय पदार्थ सभी के लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो इसी क्रम में हम आपको जानकारी दिलवाते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं गर्मियों के सुमधुर पेय पदार्थ वार्ता के अंतर्गत, जिसका विषय है गर्मियों के सुमधुर पेय पदार्थ। और आपको जानकारी दे रही हैं दीपा भार्गव।
3: बहनों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। मई जून की गर्मी का तो नाम सुनते ही बेचैनी बढ़ जाती है। चढ़ता पारा, गर्म लू के थपेड़े, सूरज की तपन इतनी तेज कि वो शरीर को अंदर तक झुलसा रख देती है। बहुत अधिक तापमान और पसीने से शरीर में जलीय अंश की कमी होती है, भोजन के प्रति रुचि भी कम हो जाती है। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना काफी मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकती है। जब ऐसे हालात होते हैं तो शरीर हर समय बस ठंडा ही ठंडा मांगता है, ठंडा यानी कि शीतल पेय पदार्थ। बहनों, गर्मियों के आते ही बाजारों में जैसे ठंडे पेय पदार्थ की बहार आ जाती है। हर गली में, चौराहे पर शिकंजी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ के गोले, गन्ने का रस वगैरह की दुकान सज जाती हैं। असल में इस मौसम में शरीर को शीतलता की जरूरत भी होती है। गर्मी की वजह से पसीना ज्यादा निकलता है तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और लू लगने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में तरह तरह के शीतल पेय पदार्थ बड़ा सुकून लेकर आते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ठंडे के नाम पर कुछ भी शरीर में डाल लेना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अधिकतर दुकानों में साफ सफाई का अभाव रहता है। सड़क किनारे दुकान होने से मक्खी, मच्छर और धूल वगैरह उड़कर पेय पदार्थ पर बैठ जाती हैं। और तो और, फलों का रस निकालने के लिए दुकानदार सड़े गले फलों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अशुद्ध बर्फ का भी इस्तेमाल होता रहता है। अतः हमें बड़े देखभाल करके बाजारों में पेय पदार्थ पीने चाहिए। तो बहनों, अगर ऐसा ही हाल है तो क्यों हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें? घर पर ही क्यों ना शीतल पेय पदार्थ बना लें, जो स्वास्थ्यवर्धक भी हैं, स्वादिष्ट भी हैं और साथ ही साथ उनकी स्वच्छता की भी गारंटी होती है और घर पर बनाना बहुत आसान भी होता है। वैसे तो गर्मियों में पिए जाने वाले अनेकों मनोभावन शीतल पेय पदार्थ हैं जो आप घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकती हैं। कुछ के तो नाम मैं आपको गिनवा भी देती हूँ, जैसे तरबूज का रस, आम पन्ना, पुदीने का शरबत, खस का शरबत, सत्तू, छाछ, फालसे का शरबत, बेल का शरबत, पान का शरबत, नींबू की शिकंजी, ठंडाई, लस्सी, सौंफ का शरबत, लौकी का रस और भी बहुत सारे पेय हैं जो इन गर्मियों में पिए जाते हैं। पर आज हम आपको इनमें से कुछ ऐसे पेय पदार्थ हैं जिनको कि बहुत शीतलता पहुंचाते हैं और पौष्टिकता देते हैं, उनको बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। देखिए, इन सब में सबसे पहले और सबसे फायदेमंद है आम का पन्ना। ये गर्मियों में

लू से बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है और तुरंत एनर्जी देता है। इसे बनाने का आसान तरीका आपको बताती हूँ। आधा किलो कच्ची कैरी ले लें, 250 ग्राम गुड़ या चीनी जो आपको पसंद हो, काला नमक, सांभर नमक, काली मिर्च ये आप स्वाद के अनुसार ले लें, एक चम्मच भुना जीरा और एक चम्मच पिसा हुआ पुदीना ले लें। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को छीलकर इसका गूदा निकाल लें, गुठली भी इसकी अलग कर दें। अब इसे कुकर में डालकर उबालने के लिए रख दें। जब ये उबल जाए तो ठंडा होने पर चीनी या गुड़ जो आप खाना पसंद करें, इसके साथ ही नमक, काली मिर्च, जीरा, पुदीना ये सब चीजें इसमें मिलाकर मिक्सी में पीस लें और फिर इसको बारीक चलनी से छान लें और फिर पतला करके इसमें बर्फ डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें। अब इसके बाद जो आपको मैं शरबत बताने वाली हूँ वो है पुदीने का शरबत। पुदीना जिसके नाम से ही ताजगी का एहसास होता है, ये खाने को स्वादिष्ट बनाता है और माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। गर्मी में अक्सर बच्चों को लू लग जाती है तो पुदीने के रस से बहुत फायदा मिलता है। एक बार आप ये शरबत बनाकर रख लें, पूरी गर्मी चलेगा। इसको बनाने के लिए एक कप पुदीना साफ किया हुआ, दो कप मिश्री या चीनी, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, डेढ़ चम्मच सांभर नमक, आधा कप नींबू का रस और एक चुटकी फूड कलर। अब इसको बनाने का तरीका भी देखिए। पुदीने को साफ करके धोकर मिक्सी में बारीक पीस लीजिए। दो कप शक्कर को एक कप पानी के साथ चाशनी बनाने के लिए गैस पर चढ़ा दीजिए। चीनी घुल जाने के बाद पिसा पुदीना, नमक, भुना जीरा इसमें डाल दीजिए। जब एक तार की चाशनी बन जाए तो गैस बंद कर दें। अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, डालना चाहें तो डाल दें और नींबू का रस मिला दें। ठंडा होने पर बोतल में भरकर रख दें और जब पीने का मन हो तो एक गिलास में 2 टेबल स्पून शरबत डालें, कुछ क्यूब्स बर्फ के डालें और पूरा ग्लास ठंडे पानी से भर दें। बस फिर देखिए इसका स्वाद। अब इसके बाद मैं आपको गर्मियों का एक बहुत ही गुणकारी शरबत, सौंफ का शरबत, उसे बनाने की विधि बताती हूँ। बच्चों या बड़ों में अक्सर क्या होता है, गर्मियों में नकसीर फूट जाती है, उसमें ये शरबत बहुत अधिक फायदेमंद होता है। वैसे भी सौंफ अपने आप में ठंडी तासीर वाली होती है एवं पाचन में सहायक होती है। इसको बनाने की विधि भी बहुत सरल है, आप सामग्री नोट कर लीजिए। एक कप सौंफ, 35-40 इलायची और बस 1 किलो चीनी। अब इसकी विधि देखिए। सौंफ और इलायची को अच्छी तरह से धोकर 2 कप पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अब इसे पानी से निकालकर मिक्सी में बारीक पीस लीजिए। पीसते समय भिगोए हुए पानी का ही इस्तेमाल कर लीजिए। अब सौंफ व इलायची वाले पेस्ट को चलनी से अच्छी तरह से छान लीजिए। 1 किलो चीनी में 2 कप पानी डालकर उबालने के लिए गैस पर रख दीजिए। उबाल आने पर सौंफ वाला पेस्ट कप में मिला दीजिए और उसे तब तक पकाते रहिए जब तक कि एक तार की चाशनी ना हो जाए। ठंडा हो जाए तो बोतल में बंद करके रख दीजिए। जब फिर इच्छा हो तो 1 गिलास में 2 टेबल स्पून शरबत डालकर बर्फ डालें और ठंडे पानी से उसे पूरा ग्लास भर दें। आपका सौंफ का शरबत तैयार हो गया। बहनों अब इसके बाद में गर्मी को दूर भगाने वाला, अतिसार, पेचिश, रक्त विकार ये सब रोगों के दूर करने वाला एक शरबत बताती हूँ। वो शरबत है बेल का शरबत। बेल का शरबत भी बनाने की बहुत ही आसान विधि है। एक बेल ले लें बड़े साइज की, 250 ग्राम शक्कर, 1 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 नींबू का रस। बेल को तोड़कर इसका गूदा अलग कर लें। इस गूदे में 2 कप पानी में 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दें। अब गूदे को मिक्सी में डालकर बहुत हल्का सा चला लें, यानी कि बस 1-2 बार उसको चर्न कर लें, क्योंकि इसका बीज नहीं पिसना चाहिए, या फिर आप इसको हाथ से भी मसल सकती हैं। फिर इसे चलनी से छान लें और छने हुए पल्प में चीनी, काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला दें और इसको अपनी इच्छा अनुसार पतला करके ठंडा करके आप भी पिए और अपने परिवार वालों को भी पिलाएं। अब इसके बाद मैं आपको एक और स्वादिष्ट, सुगंधित, सुपाच्य, गर्मियों में तरावट देने वाला शरबत, पान का शरबत बताती हूँ। अच्छी क्वालिटी के 10 पान ले लीजिए, 20 इलायची, आधा कप गुलकंद, 1/4 कप सौंफ, 2 कप शक्कर,
एक नींबू का रस और चुटकी भर खाने का हरा रंग जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इलायची और सौंफ को

0: साफ करके धो के 2 कप पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। पान के पत्तों को काटकर मिक्सी में डाल दीजिए। पान के साथ ही गुलकंद को भी मिक्सी में डाल दीजिए और इन दोनों को मिला के बारीक पीस लीजिए। सौंफ और इलायची को भी बारीक पीस लीजिए और दोनों को फिर चलनी से छान लीजिए। अब 2 कप शक्कर को 2 कप पानी के साथ चाशनी बनाने के लिए गैस पर चढ़ा दीजिए। चीनी घुलने के बाद पान व सौंफ वाला पेस्ट इसमें मिला दीजिए। 10-12 मिनट तक पकाने के बाद एक तार की चाशनी बन जाएगी। तब इसमें कलर और नींबू का रस मिलाकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे बोतल में भरकर रख दीजिए। बस फिर जब भी आपके घर मेहमान आए तो आप अपने हाथों से बनाया हुआ स्वादिष्ट पान का शरबत उन्हें सर्व करें। तो बहनों, गर्मियों में एक और है, ठंडाई, और ठंडाई अमृत तुल्य होती है। इसमें मिलने वाली सारी सामग्रियां बड़ी ही पौष्टिक होती हैं और घर की बनी ठंडाई तो बड़ी ही लाजवाब होती है। तो आइए जल्दी से नोट कर लेते हैं ठंडाई की सामग्री। 50 ग्राम बादाम, 10-12 मुनक्का, 10-12 इलायची, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम गुलकंद, 50 ग्राम चारों मगज, 1/4 चम्मच पिसी काली मिर्च, 2 चम्मच खसखस, 4-5 पत्ती केसर की, 5 टेबल स्पून चीनी और 750 ग्राम दूध। बनाने की विधि इस प्रकार से है। बादाम आप 10-12 घंटे पहले भिगो दीजिए। केसर को थोड़े से दूध में भिगो दीजिए। मुनक्का के बीज निकाल के रख लीजिए। अब इसके बाद इलायची, सौंफ, काली मिर्च, मुनक्का, गुलकंद, चारों मगज और खसखस, इनको पानी डाल के मिक्सी में पीस लीजिए। इसी के साथ में चीनी भी डाल सकते हैं आप, इससे क्या होगा वह अच्छे से पिस जाता है। इसे बारीक फिर चलनी से छान लीजिए। बारीक चलनी से छानने के बाद बादाम को आप दरदरा पीस लीजिए और फिर अब 750 ग्राम दूध में सारा पेस्ट, बादाम, केसर सब चीजें मिला दीजिए और बर्फ डालिए, ठंडा कीजिए और ठंडी ठंडी ठंडाई का आनंद उठाइए। इसी तरह से बहनों, फालसे का शरबत भी इन दिनों बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसे ताजा ही बनाकर पिएं तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए 1/2 किलो फालसे, उसमें 1/2 किलो चीनी डाली जाती है। दोनों को मिक्स करके इन्हें थोड़ा मिक्सी में चला लीजिए। इसका गुदा बहुत ही जल्दी अपनी गुठली छोड़ देता है। इसके बाद इसे चलनी से छानकर अपने इच्छा अनुसार इसे पतला करके बर्फ डाल के सर्व कर दीजिए। इसके अलावा बहनों, सत्तू भी उत्तर भारत में बहुत पुराने समय से खाया जाने वाला पेय पदार्थ है। ये पेट की गर्मी को शांत करता है, इसीलिए इसे स्टमक कूलेंट भी कहते हैं। भुने हुए जौ, भुने हुए चने और भुना हुआ गेहूं, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए और चक्की पर या फिर मिक्सी में पीस लीजिए और फिर मीठा या नमकीन आप अपनी इच्छा अनुसार ठंडा ठंडा इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये तो रहे बहनों गर्मियों में कुछ शीतल पेय पदार्थ जिनकी विधि मैंने आपको बताई। इसके अलावा इन दिनों ताजे फलों का रस भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, साथ ही तुरंत एनर्जी भी देता है। ये फलों में खरबूजा, तरबूज, संतरे, खीरा, ये भी आपको बड़े फिट और एक्टिव रखते हैं। गुलकंद भी और आंवले का मुरब्बा भी, ये भी बहुत पौष्टिक होता है। इन दिनों पीजिए नारियल का पानी, लौकी का रस, गन्ने का रस, छाछ, लस्सी, ये सब बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जब भी जो लेने का मौका मिले लेते रहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इन घरेलू शीतल पेय पदार्थों का सेवन करते हुए इस भीषण गर्मी से डरना नहीं है, बल्कि गर्मियों को एंजॉय करना है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता गर्मियों के सुमधुर पेय पदार्थ। वार्ताकार थी दीपा भार्गव। और बहनों, अब आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया की ओर और सुनवाते हैं यह प्यारा सा गीत।

बहनों, अब हमारी घड़ी लगातार इशारा कर रही है कि समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय पर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति रेशमा अग्रवाल को। लेकिन बहनों, उससे पहले मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं, वो हैं कुछ इस तरह। जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। तो बहनों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ स्वीकार कीजिए रेशमा अग्रवाल का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी रेशमा अग्रवाल। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है अग्निसाक्षी।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर, आपके फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 पर होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फोन करके या फोन कॉल्स के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड है 281।

0003 सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था सीता और गीता। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था आरडी बर्मन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: Hajj pilgrims spent the night at Mina. They are now converging at Plains of Arafat for the main ritual of Hajj, reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen to the Khutbah-e-Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in the evening. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for heatwave conditions today in Delhi. Heatwave conditions in the national capital are expected to continue till tomorrow, with maximum temperatures remaining between 44 and 46 degrees Celsius. IMD also predicted severe heatwave conditions in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan today. Meanwhile, the southwest monsoon is expected to reach Kerala today or tomorrow. An official declaration on the onset of the monsoon is expected from the Met Department. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: The IMD has issued an yellow alert for isolated heavy rainfall today in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha in Kerala. The southwest monsoon will be officially declared over Kerala once at least 60% of the 14 weather monitoring stations across Kerala and Lakshadweep record a minimum of 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and INSAT satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Vidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: On sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल

0: और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: Will become even more important to the world.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली।

0: गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,200

0: 32, जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं उदित नारायण और साधना सरगम को। फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और इस गीत को धुन से संवारा है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को। फिल्म का नाम था 19 अ लव स्टोरी। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से, कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फोन करके या फोन कॉल्स के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा। पिन कोड नंबर है 281003। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है क्रिमिनल।

0: इसलिए नहीं आई अब तक?
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
2: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का, और आइए आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। SP वाला सुब्रमण्यम की आवाज़ है, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण को। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों के फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब ही यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि, क्रांतिकारी और विद्रोही कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी जयंती है, जिसे नजरुल जयंती भी कहा जाता है। हर वर्ष उनके जन्म दिवस 24 और 25 मई पर भारत और बांग्लादेश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 24 मई 1899 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के चुरुलिया गांव में एक साधारण बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था। बंगाली कैलेंडर के अनुसार उनका जन्मदिन ज्येष्ठ महीने के 11वें दिन पड़ता है, जिसके कारण कई बार उत्सव की तिथियां 24 या 25 मई के बीच बदल जाती हैं। ये दिन उनकी साहित्यिक और क्रांतिकारी विरासत को याद करने के लिए मनाया जाता है। उनकी कविताओं, संगीत और सामाजिक समानता के संदेशों का सम्मान करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्हें विद्रोही कवि की उपाधि उनकी प्रसिद्ध कविता विद्रोही के लिए मिली। साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम, उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन और शोषितों के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा रचित संगीत को नजरुल गीति कहा जाता है। उनकी रचनाएं प्रेम, विद्रोह और धार्मिक सद्भाव के विषयों पर

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं कानूनी वार्ता, कोर्ट मैरिज प्रक्रिया। वार्ताकार हैं प्रेम चौधरी एडवोकेट।
6: कोर्ट मैरिज की आवश्यकता क्यों? इसमें सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर समाज मैरिज यानी शादी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज में रहकर सामाजिक रीति रिवाजों को

जानना, समझना और करना पड़ता है, क्योंकि हम समाज में रहकर रहते हैं, इसलिए सामाजिक रीति रिवाजों से मुंह भी नहीं फेर सकते। मनुष्य को समाज में रहकर सामाजिक रीति रिवाजों में बंधना ही पड़ता है। मैरिज मनुष्य के जीवन का एक अहम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर माता पिता यही सोचते हैं कि समय रहते उनके बच्चों का विवाह हो जाए। मैरिज करने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैरिज क्या है। हमारा देश अनेक धर्मों का देश है, जिसमें अनेक प्रकार की जातियां निवास करती हैं। कुछ जाति या जनजातियों में शादी के कुछ अलग ही तरीके हमारे हिंदू समाज में देखने को मिलते हैं। हमारे हिंदू समाज में हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखा गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जरूरी है कि कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, वो इस प्रकार है। कोर्ट मैरिज के लिए सबसे अहम बात यह है कि दो पक्षों यानी लड़का और लड़की का होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक विशेष विवाह अधिनियम एक्ट 1954 में बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 में विवाह करने के लिए यह शर्त है कि किसी भी पक्ष का लड़का या लड़की विवाहित नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी विकृत चित्र नहीं होना चाहिए। किसी भी पक्षकार को यदि किसी भी प्रकार का मिर्गी या दौरा आता है तो वह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकता। विवाह करने के लिए हमें यह जानना होगा कि इसका प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है। तो हम शादी के लिए पुरुष पक्ष की आयु 21 वर्ष और स्त्री पक्ष की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पक्षकारों में पहले से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। विवाह अधिकारी के यहाँ विवाह की सूचना दी जाएगी, जिसका प्रकाशन किया जाएगा और विवाह अधिकारी इसकी एक प्रतिलिपि अपने कार्यालय में लगवाएगा, जिसे जनता देख सके। इस सूचना की समाप्ति 30 दिनों में हो जाएगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं आती है तो विवाह अधिकारी दोनों पक्षों को बुलाकर के कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र प्रदत्त कर देगा। विवाह की सूचना में दोनों पक्षों के नाम, स्थिति, अविवाहित, विधुर या विवाह विच्छेद यानी तलाकशुदा किया हुआ व्यक्ति है, इस स्थिति के बाद उसकी जीविका का साधन क्या है, उम्र, दोनों पक्षों को लिखनी होगी तथा रहने का स्थान विवाह सूचना में लिखना होगा। यदि रहने का वर्तमान स्थान स्थाई ना हो तो अस्थाई और निवास की अवधि लिखना अनिवार्य होगा। वर द्वारा धारा 11 के अंतर्गत की जाने वाली घोषणा लिखनी होगी कि वह विधुर या विवाह विच्छेद अथवा विवाहित है और उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसकी वधु से कोई नातेदारी नहीं है। यदि इन शर्तों में से कोई भी शर्त गलत पाई जाती है तो दंडित होने का पात्र हूँ। इसी प्रकार से वधु द्वारा भी बयान हल्फी देकर इन शर्तों को लिखना होगा कि मैं अविवाहित हूँ या विवाह विच्छेद महिला हूँ, मेरी उम्र 18 वर्ष की हो गई है तथा मेरा कोई भी संबंध वर पक्ष से नहीं है। अगर कोई भी तथ्य गलत पाया जाए तो मुझे दंडित किया जाए। इस पर 3 साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे। 30 दिनों की अवधि समाप्त होने पर विवाह अधिकारी यानी सब रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिस पर

वर पक्ष, वधु व साक्षियों के हस्ताक्षर, तारीख व दिन अंकित होगा। इस प्रकार का विवाह का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री ऑफिस में सब रजिस्ट्रार के कार्यालय पर होता है। रजिस्टर्ड करते समय विवाह प्रमाण पत्र, पुरोहित प्रमाण पत्र, नगर पालिका के सभासद, सांसद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, विधायक आदि में से किसी एक का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के पश्चात सब रजिस्ट्रार कार्यालय से रसीद प्राप्त होगी और सब रजिस्ट्रार अपनी संतुष्टि के पश्चात विवाह का रजिस्ट्रेशन वर वधु को प्रदत्त कर देगा। कोर्ट मैरिज से होने वाले लाभ। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह कर लेने से अनावश्यक खर्चे की बचत होती है और दोनों ही पक्ष कानूनी तौर पर मजबूत बंधन में बंध जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा झंझट भी नहीं होता तथा इस बात से भी बचे रहते हैं कि वह समाज के सामने या कोई भी कानूनी कार्यवाही होने पर यह नहीं कह सकते कि हमारी शादी नहीं हुई है या यह विकृत चित्र या मिर्गी के दौड़े से ग्रसित है। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह होने पर एक प्रति खो जाने के बाद भी विवाह अधिकारी के यहाँ से दूसरी प्रतिलिपि मिल सकती है। यह कोर्ट मैरिज अपने आप में एक अहम भूमिका अदा करती है। कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को क्या समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? कोर्ट मैरिज करने पर किसी भी प्रकार के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती। सामाजिक तौर पर सात फेरों को तवज्जो दी जाती है। इस प्रकार की हुई शादी को हर व्यक्ति रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इस प्रकार की शादियों में हिंदुत्व धर्म की धार्मिक भावना दिखाई नहीं देती। इस विवाह में सामाजिक दिखावा भी दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार की शादियों को समाज स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि समाज में रहकर सामाजिक रीति रिवाज के तहत जो शादियां मंडप में समाज के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर जो विवाह संपन्न होता है, समाज उसी को सम्मान की दृष्टि से देखता है। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत की गई शादी को समाज नज़रअंदाज करता है, क्योंकि इसमें हमारे वेदांत सिद्धांत शादी के सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार वर और वधु के शादी के समान स्थान में काफ़ी दूरी होनी चाहिए। उन्होंने अपने समय के अनुसार 20 कोस की दूरी का होना लिखा है, परंतु इन सब बातों का अवलोकन करते हुए जिसमें समाज के व्यक्तियों की विचारधाराओं को सुना और समझा गया और इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए विशेष विवाह अधिनियम बना। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया से जहां लाभ मिलता है वहां कुछ हानियां भी हो सकती हैं। हमारे समाज में शादियां वेदांत सिद्धांत के आधार पर ही की जाती हैं, जहां अग्नि को साक्षी मानकर जो शादी की जाती है वही शादी होती है। कोर्ट मैरिज में सात फेरों के अलावा एक दूसरे का साथ निभाने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जाती। समाज के हर व्यक्ति को यह जानकारी भी नहीं होती है कि वह किस अमूक व्यक्ति की पत्नी है। इस प्रकार से कोर्ट मैरिज से कुछ लाभ हैं तो सामाजिक तौर पर कुछ हानियां भी हैं, जिन्हें हम झुठला नहीं सकते। यह सत्य है कि कोर्ट मैरिज करने वाले वर और वधु को हमारे समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, परंतु अब धीरे धीरे यह धारणा बदल रही है। धीरे धीरे समाज विकास की ओर

0: रहा है। समाज परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। अधिक समय व्यक्ति के पास ना होने पर इसी प्रकार की शादियां हमारे आने वाले समय में समाज में देखने को मिलेंगी।
1: अभी आपने सुनी ये कानूनी वार्ता कोर्ट मैरिज प्रक्रिया। वार्ताकार थी प्रेम चौधरी एडवोकेट। और साथियों अब सुनते हैं एक संदेश।

0: और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है, अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति

का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।

0: उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:15 पर होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। ये हमारा फोन इन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरेंद्र सिंह और निर्मणि शर्मा। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा मादा पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अतुल सक्सेना। श्रोताओं, यदि आप भी मादा पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और समाधान विषय पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25:30-135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का STD कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565-25:30-135। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रमों का संध्या 7:05 पर इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज लोक कथा लड़की की चतुराई। कथाकार होंगे अशोक कुमार। साथ ही हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में सुनेंगे ब्रज लोकगीत। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8:00 से लेकर 8:20 तक। देश गान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी खिलाड़ी 786। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें हम आपको सुनवाएंगे ताल चौताल में पखावज वादन। वादक कलाकार होंगे कृष्ण गोपाल शर्मा। रात्रि 11:00 होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

बालों का रंग काला है, शरीर की बनावट सामान्य, जिस्म, घटना की तिथि 23/4/2026 है, आंखें काली हैं, इन्होंने लाल सूट हरी सलवार पहनी हुई है और इनका निवास ग्राम शहपुर थाना कोसी कला जिला मथुरा है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना मिलती है तो वो निकटवर्ती पुलिस थाने या चौकी को सूचना दें। ये दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, उनका नाम है पूजा। पिता का नाम शिव सिंह, आयु 32 वर्ष, लिंग महिला, कद 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला, बालों का रंग काला, शरीर की बनावट सामान्य, जिस्म, घटना की तिथि 17/4/2026, आंखें काली हैं, इन्होंने पीला सूट नीला दुपट्टा पहना हुआ है, इनका निवास थोक दादूराल थाना जैत मथुरा है। इनके संबंध में अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो निकटतम पुलिस चौकी व थाने को सूचित करें। लापता व्यक्ति का नाम है विवेक, उपनाम मनसुखा, पिता का नाम स्वर्गीय रूप सिंह, आयु 16 वर्ष, लिंग लड़का, कद 4 फुट 8 इंच, रंग गेहुआ, बालों का रंग काला, शरीर की बनावट है इकहरा बदन, आंखें काली हैं, घटना की तिथि 18/4/2026 है, इन्होंने सफेद शर्ट धारीदार और काला पैंट पहना हुआ है और ये आकाश विहार कॉलोनी थाना हाईवे से लापता है। इनके संबंध में अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो निकटवर्ती पुलिस थाने या चौकी को सूचित करें। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। इसमें आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। खोए हुए व्यक्ति का नाम रचना, उपनाम कान्हा, पिता का नाम सरन सिंह, आयु 18 वर्ष 2 माह, लिंग महिला, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ,

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को वीरेंद्र सिंह और
7: बड़ी बहन की
6: राम राम।
7: वीरेंद्र भैया देखो, गर्मी बहुत पड़ रही है और ऐसी गर्मी में
6: पजरी जा रही
7: है, परेशान है। ये मानो जाते पशु कितने परेशान है,
6: बिल्कुल
7: जी हम अंदाजो लगा सके हैं।
6: हाँ।
7: और जो अपने पशुपालक भैया है देखो, अपने ऐसे ही भेजते मैं घर से दूध निकालो बाहर चरने के लिए भेजते हैं।
6: हाँ।
7: ऐसे में वो गंदी जगह पे बैठे हैं और कई सारी परेशानियां। अब जैसे पशुपालन की बात हम करें तो पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण आधार है।
6: बिल्कुल है।
7: तो गैया भैंसे बकरी है भेड़ जैसे मादा पशु दूध मांस और दूसरे उपयोगी उत्पाद कर रहे हैं, तो ऐसे जो मादा पशु है प्रजनन संबंधी इनमें समस्या ज्यादा है जाए हैं, तो पशुपालकों को ज्यादा हानि उठानी पड़े है।
6: बिल्कुल
7: है ना। मादा पशु में अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहली बात जो सामान्य समस्या आवे है वो गर्मी में हीट ना आवे को है।
6: हाँ।
7: ना दूसरी जो आवे बार बार गर्भ को ना ठहरवो है। बाकी बात और भी बहुत सारी समस्या है कि गर्भपात ही मादा पशु में गंभीर समस्या बने हैं।
6: हाँ।
7: संक्रामक रोग है, पोषण की कमी है, कभी चोट लग जाए, खराब चारो जाके जो प्रमुख कारण है।
6: और सुनो, दूध पे बहुत फर्क पड़े।
7: हाँ।
6: जैसे ऊंची भी आई गई।
7: हाँ।
6: तो वाते दूध पे फर्क पड़े।
7: हाँ।
6: और मान लो के जो कहे कि भाई हमारी भैंस जो है साल में दो बहुत ब्याह पर है, तो दो बार दूध है जाए।
7: हाँ।
6: और कभी कभी ऐसा बरसोनी है जाए।
7: हाँ।
6: और वो ब्यावनी ना रही, तो बातें जो का है दूध नहीं ना उत्पादित
7: ना है पाए।
6: हाँ।
7: तो वीरेंद्र जी वाली बात तो है कि जैसे गर्भ ना ठहरने की बात जैसे हमने करी है, तो गलत समय पर गर्भाधान है, गर्भाशय में संक्रमण है, कमजोर स्वास्थ्य है, कई कारण
6: बहुत सारी जो समस्याएं जो बीमारी उनकी वजह से जो है फर्क पड़
7: जाए। तो हम कह सके हैं कि जो माता पशु उनके अच्छे प्रजनन स्वास्थ्य के लिए

0: स्वच्छ वातावरण, नियमित टीकाकरण और समय समय पर कृमिनाशक दवा
1: जरूरी है बहुत
0: जरूरी। और पशुओं की नियमित जांच और वैज्ञानिक प्रबंधन से इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। यानी हम यही कह सकते हैं अंत में कि मादा पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्या पशुपालन के लिए बड़ी चुनौती है, पर उचित देखभाल, संतुलित पोषण और पशु चिकित्सीय सलाह द्वारा इन समस्याओं का समाधान संभव है। स्वस्थ पशु ही ज्यादा उत्पादन देने हैं और पशुपालन की आय बढ़ाने में सहायक होने हैं। हमारे जो किसान भैया हैं फोन पे बैठे होंगे भैया और रेडियो भी लेके बैठे होंगे, अब वो आज का विषय समझ रहे होंगे कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन बेसब्री से उनको इंतजार
1: है
0: कि आज को कौन सा विषय होगा। वैसे वो समझ गए होंगे हमारी जो चर्चा थे। तो भैया आप देखो, मादा पशु में प्रजनन संबंधी समस्या और समाधान पे आज को हमारा आधारित है हेलो किसान वाणी। आपकी जो भी समस्या है 25 30 135 हमारा फोन नंबर आपको मालूम ही है और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाए गए हैं। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अतुल सक्सेना। तो आपके जो भी समस्याएं हैं हमारी फोन लाइन खुल चुकी है, आप फोन करें और पामे घर बैठे ही अपनी समस्याओं को समाधान।
1: डॉक्टर साहब राम राम साहब।
2: राम राम जी सभी को, राम राम किसान भाइयों सभी को राम राम।
1: स्वागत है कार्यक्रम में आपको,
2: धन्यवाद।
1: तो किसान भैया, जैसे कि अभी हमारी नीलमणि बहन बता के गई हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अतुल सक्सेना प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, जो मादा पशुओं के सम्मान के जो गायनेसी है वहाँ में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी नीलमणि बहन अभी बता के गई हैं, चर्चा कर गई हैं, तो विशेष करके गर्मी में जो मादा पशु हैं उनमें जो है पोषण और गायनेसी से संबंधित कौन कौन सी ऐसी समस्या है जहाँ जाते कि पशु हमारा जो है किसान के काजे एक तरह से वाके जो सपने वाने देखें या वाने जो उससे आय की जो उम्मीद रखिए बाप खरे नाम तर पावे।
2: ओम प्रकाश जी, देखिए हम इस मंच से लगातार किसान भाइयों को अक्सर ये बातें बताते रहते हैं
1: जी जी जी
2: कि पशु के दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है उसका आहार। और हम कहते हैं कि दूध का उत्पादन का 70% लागत जो होती है वो आहार आती है
1: जी।
2: तो इस कारण से हर किसान को इस मामले में समझना चाहिए कि उसका पशु दूध देगा जब उसको आप एक ठीक से खाना खिलाएंगे
1: जी जी।
2: दूसरी बात कि हर बार पशु को एक हम जिसे कहते हैं कि उसका जो है दूध देने का काल जिसे हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, वो लगभग हम मान के चलते हैं 300 दिन का लैक्टेशन पीरियड होता है। मतलब एक गाय या एक भैंस अगर बच्चा दे देती है तो वो 280-300 दिन तक दूध लगातार देते रहे
1: जी।
2: इन अब आप कहेंगे कि ये 300 दिन दूध लगातार देती रहे और अगर हम किसानों के बीच में जाके बैठेंगे तो वहाँ से हमें खबर मिलती है कि जी नहीं, ये तो 240 दिन भी आ रही है, 260 दिन भी आ रही है और 300 नहीं पूरा कर सकते। ये सारी बातें इस बात को इंगित करती हैं कि पशुओं के लिए अगर आप आहार दाने को उसके दूध के उत्पादन के साथ जोड़ते हुए अगर नहीं देंगे जो वैज्ञानिक पद्धति है तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
2: किसान भाइयों के जनरल उसके लिए कि एक हम कहते हैं कि हर किसान भाई एक किलो दाना कम से कम हर 2.5 लीटर दूध पे दे।
1: अच्छा।
2: और उसमें एक किलो दाना और बढ़ाए वो इसके लिए कि वो जिससे कि वो अपनी शरीर की मांसपेशियों और अपने शरीर को मेंटेन कर सके।
1: बिल्कुल।
2: तो ये एक मोटा मोटा सा चीज है, अगर ऐसा चलते हैं तो सही होगा और आपको फायदा होगा।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी बात, हम लोग अक्सर इस मंच से भी कहते रहते हैं कि देखिए हम दूध के व्यवसाय या हमारा पशुपालन हमारे को अच्छा महसूस तब होगा जब हम हर गाय से एक साल में एक बच्चे की प्राप्ति को लक्ष्य रखते हैं
1: जी।
2: और उसके लिए सीधा सीधा हिसाब सभी किसान भाइयों को पता है कि साल में 365 दिन होते हैं और उस 365 दिन में अगर एक गाय का गर्भकाल देखें तो वो लगभग 280 दिन 285 दिन के आसपास का होगा
1: जी।
2: तो अगर मैं 365 दिन में से 285 दिन घटा देता हूँ तो लगभग मेरे पास 85 दिन 80 दिन शेष रह जाते हैं। किसान भाइयों को ये कुंजी हमेशा समझनी पड़ेगी कि बच्चा देने के बाद आपका पशु

0: 85 दिन 90 दिन के अंदर ग्याभन अगर हो जाता है, गर्भ ठहर जाता है, तो ये उसका हमेशा एक लाभकारी व्यवसाय होगा।
1: यूं कहें गामन में के नई है गई।
0: हाँ, नहीं। तो ये जो चीज है जिसको हम कह रहे हैं कि वो ब्याने के बाद 85 दिन 90 दिन में ग्याभन हो जाए,
1: जी,
0: ऐसा देखने को प्राय नहीं मिल पाता।
1: हाँ।
0: क्योंकि हमारा जो किसान है वो अभी भी अनभिज्ञ है और वो एक वैज्ञानिक पद्धति को हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं।
1: हाँ।
0: हम हमारे माध्यम फेल है, हम इस तरीके से बात कह सकते हैं।
1: विशेष करके अपने अनुभव है वो ज्यादा
0: प्रयोग करते हैं।
1: जी, हाँ। जी।
0: और इसीलिए किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सोचें कि ब्याने के बाद दाना देंगे तो दूध आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और जब कभी भी पशु को अगर आप दूध में लाना चाहते हो तरीके से, तो हम कहते हैं जब वो गर्भकाल 100 डेज कॉन्ट्रैक्ट, 100 दिन का संबंध, इस 100 दिन के संबंध में 30 दिन बच्चा देने से पहले और 70 दिन बच्चा देने के बाद हम उसको इस तरीके का फीडिंग प्रोग्राम में ढाल के रखें कि वो ग्याभन जो हमने बताया कि ब्याने के बाद 85 दिन के अंदर हो जाए तो वो हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब एक भैया लाइन पे अभी शायद कट गई लाइन, तो अब जैसे आपने बताई कि पशु को जो है इतने समय अंतराल पे जो है ग्याभन है जाना चाहिए। अच्छा, अब बहुत से किसान भैया की एक जिस समस्या रही है। अच्छा, एक भैया लाइन पे पहले उन्हें ले लें। हेलो किसान वाणी।
2: अच्छा, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया।
1: हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं जी, शुभ नाम बताओ।
2: मैं राजपाल सिंह बोल रहा हूँ, मई करौली।
1: अच्छा अच्छा, पूछो कहाँ जानना चाह रहे हो डॉक्टर साहब से।
2: जानना जो चाह रहे हैं, वही गाय है वो हरे 18 में 20 में बिना ग्यावन होती है।
1: अच्छा,
2: वो ठहरना रही,
1: मतलब ग्यावन रही ठहरना।
0: हाँ, ये आपका पशु किस नस्ल का है, दोगला है या अपना देसी नस्ल का है?
2: जर्सी
0: है ना। देखिए, ये इसीलिए पूछा जा रहा है कि जर्सी के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी और वो सारी चीजें दाना चारा से ही रिलेटेड हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से परेशान हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक बार इसका कॉलेज में ला करके, यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी में लिया करके इसका एक अल्ट्रासाउंड करा लें। बहुत ज़्यादा ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो अंडा सही से नहीं निकल पाने की कारण हो रही है, और इसके लिए एक बार अगर अल्ट्रासाउंड देख लेंगे तो आपको एक समुचित उपाय बता देंगे और आप उसका इंजेक्शन लगाएं। जब ग्याभन होने की वक्त आए तो उससे पहले आप इंजेक्शन लगा देंगे तो आपके गर्भ ठहरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
1: जी,
2: ऐसे सीमेंट रखवा लेते
0: हैं? नहीं, सीमेंट धरवा लेते हैं आप, लेकिन चक्कर क्या है ना, जब सीमेंट धरवाते हैं और जब अंडा निकलता है उसके समय में बहुत अंतर हो रहा है, और इसी कारण जब समय में अंतर हो रहा है और ये ज़्यादातर दोगले नस्ल के या क्रॉस ब्रेड एनिमल में ये मिलेगी, देखने को मिलेगी, तो जब बीज धरवा रहे हो और अंडा निकल नहीं पा रहा तो वो बीज आपके लिए बेकार हो गया। इसको हम इंजेक्शन की मदद से अंडे को निकालेंगे और उसके कारण आपका गर्भ, मतलब पशु का गर्भ ठहरने का एक साधन बनेगा।
1: डॉक्टर साहब बहुत जागरूक किसान है हमारे, जी जानकारी लेते रहे हैं, हर बार सम्मिलित हुए कार्यक्रम में,
0: बहुत जरूरी है जी। इस हाँ। मंच से ये माध्यम इसीलिए बना है कि किसान अपनी समस्याएं घर से बैठ करके पूछे
1: जी, जी,
0: और उनको अपनाए और उनसे उनको फायदा मिलता है तो वो हमारे संग और जुड़ेंगे।
1: एक भैया ऑनलाइन पे। हेलो किसान वाणी।
2: हेलो।
1: हाँ, राम राम सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: राम राम, राम सिंह कुमार बोल रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो, पशु के जो प्रजनन संबंधी समस्या पूछो।
2: हम जी पूछना चाह रहे हैं, जैसे एक पशु है ब्यान आ रहे हैं, चोकर कब कब खवानी चाहिए, कौन कौन से टाइम पे?
1: चोकर
2: चौक चौक खड़िया।
1: अच्छा, खड़िया। बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: देखिए आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि आप चौक ना करके आप बल्कि एक काम किया कीजिए कि हर पशु को अपना एक मिनरल मिक्सचर जरूर दिया कीजिए। ये मिनरल मिक्सचर में ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो कि आमतौर पे हमें आज की जो व्यवस्था है उसमें हमारे जो चारे दाने में मुश्किल से आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा आज की डेट में हम कहते हैं कि हमारे प्रकृति का या हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब है और गवर्नमेंट मृदा स्वास्थ्य कार्ड इशू करती है उसके लिए। तो इसीलिए मैं आपको चौक की सलाह ना दे करके आपसे कहूँगा कि आप मिनरल मिक्सचर का सेवन करवाएं, प्रति पशु कम से कम 30

0: आप जरूर दें उसको, और इसके लिए आप बहुत ज्यादा दिक्कत में भी ना आए या बहुत महंगा मिनरल मिक्सचर भी मत खरीदिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कभी वेटनरी यूनिवर्सिटी आ जाइए, वहाँ पे हमारा पशु पोषण विभाग है जो कि आपको एक रियायती दर पे मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराता है।
1: और कोई बात जाननी हुए? चलो ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत समस्या है, किसान ये ना जाने कि भाई पशु के का जितना चारो जरूरी है उतना ही जो है उनको खनिज लवण दे।
0: देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं इसी लिए
1: जी
0: इसको अभी क्लियर कर देता हूँ।
1: जी
0: जैसा कि मैंने आपको बताया
1: जी
0: कि आज हर किसान अपनी मृदा के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करवा रहा
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल
0: इसका मतलब ये सबको पता है कि उनकी मृदा में जो खनिज लवण है उनकी कहीं ना कहीं कुछ कमी है,
1: कमी
0: और
1: है।
0: इसके लिए उनको कृषि विभाग एक सही समुचित राय देता है।
1: जी
0: जब उस जमीन से चारा उग रहा है, भूसा बन रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो भी तो इस चीज में कमी को प्रदर्शित करेगा, और जब वही चीज हमारा पशु खाएगा तो उसके अंदर ये चीजों की तत्वों की कमी जा रही है। इसीलिए पूरे हमारे भारतवर्ष में हर जगह, हर स्टेट के अंदर मिनरल मिक्सचर उनके रिकमेंडेड हैं, और वही मिनरल मिक्सचर जो हैं वो लोग बाग उनको खिलाते हैं।
1: जी। तो जैसे कि अगर हमारे किसान भैया ने उपलब्ध न हो इस समय पे, तो जैसे पहले समय पे किसान का करे कि लड़ामनी में डाल दे एक डपार वाको बड़े से वाको नमक को
0: नहीं, वो चीज अलग है।
1: है
0: देखिए, नमक में है क्या, सोडियम क्लोराइड
1: हाँ
0: दो ही तत्व हैं, इसकी भी कमी होती है। नहीं तो आपने देखा होगा पशु जो है दीवार चाट लेता है,
1: हाँ
0: या लड़ावनी को चाट चाट करके उसको वो आधा कर देता है।
1: हाँ मिट्टी खामन लगे नीचे से।
0: हाँ तो ये इसीलिए बने गए हैं।
1: हाँ तो एक भैया लाइन पे हैं, उनकी बात लें। हेलो किसान वाणी।
2: हेलो डॉक्टर, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया।
1: हाँ राम राम जी, शुभ नाम बताओ कहाँ से।
2: मैं साहब सतवीर बोल रहा हूँ, जनपद हाथरस, गांव जड़ीपुरा से।
1: अच्छा, बोलो क्या जानना चाह रहे हो।
2: हाँ सर, हमारी ये सवाल है। चल तो आप जो ये प्रोग्राम आप करते हैं तो हमें डॉक्टर साहब को एक नंबर जरूर आप बतवायो करो।
1: हाँ मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा।
2: हाँ तो उससे रहे कि हम कोई बीच में जो हमारे कोई समस्या आ जाए पशुओं के लिए तो हम उनसे फोन करें तो उनकी जो मार्गदर्शन ले सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूर।
2: हाँ
1: तो डॉक्टर साहब बता रहे
2: हैं। हाँ
0: लिख लीजिए, 94-127
2: 94-127
0: 2683
2: 2613
0: मैं आपसे अनुरोध से इतना करूंगा कि इसको आप सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ज्यादा उपयोग में लीजिए, और कोई बहुत इमरजेंसी हो जाए तो आप मैसेज कर दीजिए, उसके थ्रू हम जवाब दिया करेंगे।
1: हाँ आजकल तो व्हाट्सएप की सुविधा है, तो कोई मैसेज डाल दो और तुरंत डॉक्टर साहब जवाब दे दिया करेंगे। अब आप यहाँ पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो।
2: हम सर ये पूछना चाह रहे हैं
1: जी,
2: तो एक तो जैसे एल्बेंडाजॉल गोली है हम कीड़े मारने की जो दवा देते हैं, तो ये मतलब जैसे हमारी गाय ब्याही है, अब 15-20 दिन की हुई है, तो उसे देने का सही समय क्या है।
0: कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी गाय भी आ गई है आप दीजिए, हर 6 महीने में आप दे सकते हैं, और गोली को बदल बदल के दे दीजिए। अगर आप आज एल्बेंडाजॉल दे रहे हैं तो अगली बार फेनबेंडाजॉल दें, उसके बाद हाँ चेंज करते रहिए ताकि उसके ऊपर इम्यूनिटी किसी एक पर्टिकुलर ड्रग की ना हो।
2: अच्छा सर, ये जेर की समस्या रहती है कभी कभी, इसने जो पशु 24 घंटे तक जेर नहीं डालता है
0: जी।
2: तो उस स्थिति में जैसे हमने मान लो दूध भी निकाल लिया उसका, और दूध निकालने के बाद फिर भी वही समस्या रहती है, तो उस स्थिति में हम क्या करें।
0: देखिए, जेर रुकना क्यों होता है, क्योंकि जब कभी आपके बच्चा ओछा पैदा हो जाए, कुछ दिन ओछा पैदा हो जाए ठीक है, तो ये दिक्कत आएगी, या कभी अबॉर्शन हो जाएगा तब ये दिक्कत आएगी। अगर आपका बच्चा एक स्वस्थ और तरीके से पैदा हुआ जिसमें कोई आपको खींचातानी करके नहीं निकालना पड़ा है, तो ऐसा बच्चा ऐसे में जेर रुकना मुश्किल होगा कि वो जेर रुकेगा नहीं, आएगा। और इन सब के पीछे अगर हम कहानी बताएं तो कहीं ना कहीं हमारा पशु पोषण, पोषण जो एक बहुत बड़ा आधार होता है, या मिनरल मिक्सचर, या हम

0: खनिज लवण की बात कर रहे हैं उसका होता है। तो आप कभी भी ये सोच लीजिए कि अगर आपके पशु का जेर रुकता है तो मोटी सी बात ध्यान रख लीजिएगा, दूध उतारिए, कोई घिन मत कीजिए कि पीछे जेर लटक रहा है दूध नहीं निकालेंगे, इस तरीके की कोई भावना मत रखिएगा। दूध नियमित उतारिए, बच्चे को नियमित पिलाइए, जो रूल्स हैं हमारे कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको प्रथम दूध माह का
1: घंटे के अंदर
0: पिला दीजिए, है ना। और मान लीजिए 24 घंटे में जेर नहीं निकला, कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए, उससे कोई बुरा प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन अगर जेर कच्चा, जिसे हम कहते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, तो अगर कच्चा जेर को अगर आप हाथ डाल के खिंचवा करके निकलवाओगे तो वो खून निकलेगा। और कभी कभी आप देखते हो कि उसमें जेर के साथ माँ के बच्चेदानी की गांठें भी बाहर आती हैं, जिससे कि आप बच्चेदानी को जख्म पैदा कर रहे हो और आगे के प्रजनन की संभावनाओं को रोकने का काम कर रहे हो। एक दफा जब जेर थोड़ा सड़ जाएगा, 48 घंटे भी हो सकते हैं, 72 घंटे तक जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। गर्मी है ये जल्दी काम हो जाएगा, सर्दी है थोड़ा और लेट होगा, तो इस चीज का प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए आप जेर को जब वो सड़ जाए तो एक बार हाथ डाल करके उसको हल्का सा भी झटका देंगे तो वो अपने तरीके से निकल जाएगा,
1: निकल जाएगा। हाँ। तो इसी वजह से सर घबराते हैं गांवों में, कार्य 24 घंटे हो गए तो अभी जेर नहीं डाला।
0: आप तो अगर अपने गांव के एक जागरूक पशुपालक हैं तो आप ये जो बात यहां से सुन रहे हैं इसको लोगों को पहुंचाइए, आप ये काम अपने।
1: ऐसा सर मेरी आपसे बहुत पहले मुलाकात भी हुई है, मैं गया हूँ वेटनरी और आपसे मैं परामर्श भी पहले लेता रहा हूँ
0: जी।
1: तो हाँ, आपकी जो बातें हैं जो जानवर देखे हैं उन्हें फॉलो करते हैं
0: जी।
1: अब जब जैसे पशु ब्याना होता, मतलब ब्याता है, उससे पहले जैसे 2 महीने शेष रह जाते हैं तो आप 250 ग्राम वो खाना खाने के बाद में फिर उसे आप दाना पानी दें तो 2 महीने तक 2 किलो हो जाए, तो वो दूध भी ज्यादा देगा। हाँ, तो आपने ये बताया हम सब फॉलो करते हैं,
0: अच्छी बात है बहुत। और अगर आपकी कोई समस्या होती है तो आप हमेशा स्वागत है आपका कि आप यूनिवर्सिटी आए और हमसे विचार विमर्श करें।
2: बहुत बढ़िया बात पूछी डॉक्टर साहब ने। तो विशेष करके हमारे किसान भाई ने ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अंतः परजीवी हैं, कृमि या तो पटेरे बोलें, तो इनको जो है यह हमारे जो जनन में बड़ी जो है समस्या पैदा है जाए, तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जाते के अंतः परजीवी तो ये गाने से प्रभावित है जाए।
0: देखिए, परजीवी तो हर पशु में आ ही रहे हैं
2: जी,
0: और उसका एक मुख्य कारण क्या हो रहा है कि अभी भी अगर हम गांव में देखें तो स्वच्छता के प्रति हमारे पास ध्यान बहुत कम है। पता चला कि नाली निकल के आ रही है, बाहर रोड पे पानी भर गया है, वहीं आपका पशु जा भी रहा है, और अगर आज की डेट में हम कहें कि गर्मी है और भैंस है तो वो उस पानी में लोट लगा करके भी अंदर जाएगी
2: जी।
0: ठीक, तो प्लस चारा दाना अगर हम तरीके से नहीं ला पा रहे हैं या तो उससे भी हमारे पास ये आएंगे, तो अंतः परजीवी तो आएंगे। लेकिन इसके लिए जैसे अभी एक किसान भाई ने पूछा था कि भाई वो एल्बेंडाजॉल दें, फेनबेंडाजॉल दें, कृमि नाशक दवा
2: जी।
0: तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पशु में कृमियां हैं, ठीक, तो आप उसको 6-6 महीने के अंतर पे आप उसको कृमिनाशक दवा दे सकते हैं, और वो सॉल्ट बदल के दीजिए। ये एक तरीके की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई परजीवी पलेगा तो वो आहार भी पशु से ही तो ले रहा है
2: जी,
0: उसको खून चूस के ले रहा है, उसकी आंतों से निकाल रहा है, और इस कंडीशन में उसको नुकसान पहुंचा रहा है।
2: बिल्कुल
0: ठीक, तो उसको पलने तो दे नहीं, ठीक, क्योंकि ये जो ऐसे परजीवी, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो फायदा करते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं।
2: एक भैया लाइन पे पहले बात कर लें। हेलो किसान वाणी।
3: राम राम जी।
2: हाँ राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: राय के पास खलौई आज जाते।
2: अच्छा अच्छा, निसू जाते बोल रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हो आज पशुपालन में प्रजनन संबंधी समस्या से संबंधित?
3: एक वो सर है, दे रही है।
2: हाँ हाँ, क्या पूछी दोबारा पूछो। वो सर आपकी कहा समस्या है वो हमें दोबारा पूछे आप।
3: मतलब वो सर अगर आप हीट दे रही है।
2: अच्छा, हीट पे आ रही है
3: आप? हीट आ रही है, पहले होने
2: अच्छा, तो वो मतलब मिलवाई ना है फिर साढ़ते।

0: क्या बात है?
1: पहले बार
0: अच्छा, फिर वो रुक ना पा रही है? अच्छा, तो अब समस्या कहाँ रही है हमें?
1: पूछ रहे दो दिन आपने घेरी करवाने का आज ही कराए थे।
0: हाँ डॉक्टर साहब पूछ रहे। डॉक्टर
2: ये ओसर पड़िया किस नस्ल की है?
1: दो बलिया
2: दोगली है ना
0: बच्चिया,
2: ठीक है। और आप बता रहे हो कि वो दो दिना से हीट पे है, अब आपने सांड दिखला दिया उसको। हमारी सलाह ये रहती कि आप अपने आसपास जो भी कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहा है उससे बीज डलवाइए, है ना। क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि कृत्रिम गर्भाधान में जो बीज दिया जाता है वो सबसे बढ़िया सुरक्षित तरीके से बना हुआ होता है, और वो आपको ये गारंटी देता है कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। ठीक, आप किसी भी सांड से अगर आप उसको गर्भित करवाएंगे तो ये आपके लिए नुकसान होगा, प्लस जो आप हमारा जो एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का जो प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं अनुवांशिकी के द्वारा हम नस्ल सुधार के कार्यक्रम है, उसको भी हम झटका पहुंचाते हैं इस तरीके से। तो मैं तो कृषक भाई से कहूंगा कि भाई वो एक कृत्रिम गर्भाधान को अपनाएं, उसमें जो भी गर्भाधान करने वाला आता वो आपको ये बात की और जानकारी देता कि आपका पशु सही गर्मी में है या नहीं है। तो ये जो आप जो अभी मेरे से समस्या पूछ रहे हो कि दो दिना से गर्मी पे आ रही है, दोगले नस्ल की गाय शुद्ध नस्ल की जो जर्सी गायें हैं उनमें ये समस्या रहेगी, और इस समस्या को जो गर्भाधान करने आएगा वो सबसे आपको तरीके से बताने में उपयुक्त होगा, ये बात आप मान के चलिए।
0: साई वाले
2: देखिए, दोगली आप खुद बोल रहे हो ना, तो दो दोगली का मतलब एक में आप कह रहे हो साहीवाल का भी खून है उसमें, और उसमें जर्सी का भी होगा या आपका होल्स्टीन फ्रीजियन का वो होगा बीज, है ना। तो दोगली है,
1: साहीवाल का भी है।
2: अरे ठीक है, मान ली आपकी बात हमने, उससे हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये आपके लिए अगर आप इसमें गर्मी की ये जो समस्या आ रही है अगर आप इसको सही से देखोगे नहीं, सही से जो हम बात बता रहे हैं अगर उस पर नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत आनी शुरू होगी। इसीलिए तो कह रहे ना, आपने उसको सांड दिखाया, अब मान लीजिए सांड दिखाया और सांड दिखाने में आपने पशु के पैर बांध करके उससे सांड से गर्भित कराने की कोशिश की, तो वो कोई गर्मी पहचान नहीं पाएगा।
0: बिल्कुल
2: ठीक है, ये चीजें ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। और आमतौर पे गांव में यही एक तरीका होता है कि पेड़ से गाय को बांध दिया जाता है और सांड को छोड़ दिया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब जीना देख रहे कि वो पूर्णतः जो है गर्भाधान के लिए उपयुक्त है कि ना।
2: आप थोड़ा सा जो ये माध्यम सरकार दे रही है और इसमें आपके द्वार तक हम लोग इस तरीके से पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको अपनाइए। दिक्कत आती है चले आइए, बातें कीजिए, आपको कुछ ज्ञान ही मिलेगा और आपके लिए पशुपालन के लिए आपको एक अच्छा सबक मिलेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि किसान ने अपनी बात पूछी, अब समय की थोड़ी सी बात बताए, चलते चलते ये बात जानना चाहेंगे कि एक तो जो हमारे पशु पालक जो हैं अपने पशु को जो बाखर रह जाए तो बात समय पर क्या करें कि वो सुई लगावें, तो वो कौन सी दवा हुए और वो कितनी हानिकारक हुए, और वाते ये हमारे जनन पे कोई फर्क पड़ेगा पशु में?
2: बिल्कुल, आपने बहुत सही बात पूछी है। देखिए, जो आमतौर पर जब दूध नहीं उतरता है तो ये लोगों के पास एक धरी हुई चीज़ है कि वो ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा है।
0: हाँ।
2: ये पशुओं में कभी भी दूध उतारने के लिए नहीं बना गया। ये आमतौर पर ये ऑक्सीटोसिन का उपयोग जब पशु में प्रसव के समय दर्द नहीं बन रहे होते हैं, तो उस समय प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए
0: आसान करने के कार्य
2: के लिए ये इंजेक्शन लगा जाता है।
0: जी जी।
2: लेकिन उसका दूसरा उपयोग ये भी है कि भाई वो दूध भी उतारता है। अब लोगों ने उसको ज्यादातर दूध उतारने के काम में लेना शुरू कर दिया।
0: हाँ,
2: और उसमें भी वो जो दवा मिल रही है वो बहुत क्रूड है।
0: हाँ,
2: मतलब वो कोई परीक्षित दवा नहीं है, क्योंकि किसान भाई भी चाहता है कि जो उसको सस्ती में मिले।
0: हाँ।
2: अगर मैं आज उससे कहूँ कि 40 रुपए का इंजेक्शन लगा करके दूध उतारे तो उसको कभी

0: पड़त नहीं खाएगा।
1: हाँ।
0: तो वो जो सबसे बाजार में इस तरीके की दवाएं ब्लैक मार्केटिंग में मिलती हैं कि वो आपको 5 रुपए में मिल जाएगी, 2 रुपए में भी मिल जाएंगी, तो ये उससे दूध उतारने का काम कर लेते हैं
1: जी जी।
0: और इससे किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि मान लीजिए आपका पशु अगर गर्भ धारण किया
1: जी,
0: उसने और वो बहुत अभी छोटे गर्भ में है, 2 महीने की प्रेगनेंसी है, 1 महीने 1.25 महीने की प्रेगनेंसी है, और आप इस ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपको गर्भ को ठहरने में भी
1: अच्छा।
0: दिक्कत देगा, क्योंकि हम ये कहते हैं हमेशा कि जब कभी भी गर्भ ठहर जाता है तो यूट्रस शांत हो जाता है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादातर बंद हो जाती है
1: जी जी।
0: और वो एक्टिविटी ना जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और वो गर्भ तभी रुकता है। और अगर आप बाहर से इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो वो उसके गर्भाशय को संकुचित करेगा और इस संकुचन के कारण गर्भ रुकने में दिक्कत आएगी, गर्भ रुक नहीं पाएगा।
1: वो किसान भैया जो कहे कि हमारी गाय रुक रही ना है, कि हमारी भैंस रुक रही ना है,
0: जी।
1: वो इंजेक्शन लगाए वो बंद ना कर रही
0: जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बस अब समय थोड़ा सा कम है, तो बस एक बात और कि जे पशु के पोषण में यानी भोजन में जे ज्यादातर पुआल है काट काट के जो प्रयोग कर रहे हैं, तो जी कितना हानिकारक है, बस जहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डाल रही है।
0: पुआल में फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है
1: जी।
0: और ये अंदर बाकी तत्वों के साथ मिलकर के भी दूसरे तत्वों को भी अपने साथ मिला करके रोकता है, तो ये तो थोड़ा है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खिलाएं तो ज्यादा सही है।
1: हाँ।
0: लेकिन अगर आप उसका ही उपयोग सीधा करते रहेंगे तो ये नुकसानदायक
1: नुकसानदायक
2: भैया
1: की समस्या बता।
2: हाँ, पर कभी हमें समय को भी ध्यान रखना है।
1: हाँ, हाँ।
2: तो आज का जो विषय है वो मादा पशु में प्रजनन संबंधी समस्या समाधान पे आधारित विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल सक्सेना।
1: हाँ।
2: तो बीरेन भैया, आशा है आज की जानकारी अपने किसान भैयाओं के लिए लाभकारी रही है।
1: बिल्कुल।
2: और जय विश्वास के संग कार्यक्रम को विराम दे में।
1: हाँ।
2: सब भैया मनन को
0: राम
1: राम। डॉक्टर साहब आपको विराम।
0: राम राम, सभी को राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।
1: श्री हनुमान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी हैं। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान हैं।

0: अभी आपने अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही भक्ति परक कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम, यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में ब्रज लोक कथा लड़की की चतुराई, कथाकार हैं अशोक कुमार।
1: एक गरीब आदमी है तो एक दिन वो राजा के पास गया और बोलो, महाराज मैं आपसे कर्ज मांगवे के ताई आया हूँ, कृपा करके आप मुझे 5,000 रुपया कर्ज में दे दो, मैं 5 वर्ष के भीतर आपके पैसन को वापस कर दूंगा। राजा ने बाकी बात को विश्वास करके वह 5,000 रुपया दे दीने। 5 वर्ष बीतने के बाद जब वो व्यक्ति राजा के पास वाके पैसन को लौटाए के ताई ना आयो, तब राजा को मजबूर है के बाकी घर जानो पड़ो, लेकिन वो व्यक्ति माँ ना मिलो। वह राजा भी माँ जातो तो वो बाकी घर के बहानों बनाए के नहीं है राजा को वापस भेज दियो करते। एक दिन फिर राजा वह व्यक्ति के घर गयो और वहाँ और कोई तो ना देखो, एक छोटी लड़की बैठी हुई दिखी। राजा ने बाईते पूछो कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा। लड़की बोली, पिताजी तो स्वर्ग को पानी रोक भी गए हैं। राजा ने फिर पूछो कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ों कर भी गए हैं। राजा के समझ में एक बात बाकी ना आ रही थी जा लिए, वो फिरते बोलो कि तुम्हारी मैया कहाँ है, तो लड़की बोली, मैया एक ते दो कर भी गई है। राजा बाकी उलझल उलझवा बनते गुस्सा है गयो, वो गुस्सा में पूछो कि तू यहाँ बैठी भई कहाँ कर रही है। लड़की ने हंस के कही कि मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गयो कि लड़की बाकी बातन को सीधो सीधो जवाब ना देगी, जा लिए बाने इन सब बातन को मतलब जानवे के ताई लड़की ते प्यार ते बोलो कि बेटा जो जवाब दिए तुमने मुए, इन जवाबन को मेरी समझ में कछु ना आयो, तो आप मुए इनको सही सही मतलब मुए बता दो। तो लड़की बोली कि मैं आपको इन सब को मतलब समझा दूंगी तो आप मुए का दोगी। राजा के मन में सारी बातन की जानवे की तीव्र उत्कंठा हती। वह बोलो कि जो मांगोगी वो ही दूंगो। तब लड़की बोली कि आप मेरे पिताजी को सबरों कर्ज माफ कर दोगे, मैं आपको सारी बातन को अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को सारो कर्ज माफ कर दूंगा, अब तो सारी बातन को अर्थ बता दो। लड़की बोली, महाराज आज मैं आपकी सारी बातन को अर्थ ना समझा सकूं हूं, कृपया करके आप कल आओ, कल मैं आपको जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर वह व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे, वो आदमी, बाकी पत्नी, बेटा और वो बेटी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछी कि महाराज आपको अपना वचन याद है ना। राजा बोलो, हाँ मुझे याद है, तुम अगर सारी बातन को अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी को पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहो होतो कि पिताजी स्वर्ग को पानी रोक भी गए हैं, जाको मतलब ये है तो कि वर्षा है रही हती और हमारे पिताजी घर की छत को पानी टपक रहे हो तो बाहर रोक भी के ताई छत पे छान बनाए रहे हते, यानी कि वर्षा को पानी आसमान से गिरे है और हम लोग तो बाई है स्वर्ग माने हैं। बस पहली बात को अर्थ यही हो। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के

0: झगड़ा कर भी गए हो, या को मतलब कि रेंगनी के कांटे इनको काट भी गए हो। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे इनको काटेगो तो शरीर में जहाँ तहाँ कांटो गड़ जावेगो, और यानी कि झगड़ा नाए करवे के बाद भी झगड़ो होएगो और शरीर पे खरोंच आ जाएंगी। राजा बाकी बातन ते सहमत है गयो। वह मन ही मन बाकी चतुराई की प्रशंसा करवे लगो। माने उत्सुकता के साथ पूछो कि तीसरी चौथी बातन को मतलब और बताओ बेटी। लड़की बोली कि महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ एक ते दो कर भी गई है, जाको मतलब कि मैया अरहर की दाल को पीस भी गई, और वो एक के दो कर भी गई। अगर साबुत दाल को पीस हो जाए तो दानों दो भागन में विभाजित है जाबे है, यानी जई हतो के एक को दो करवो। रही चौथी बात, तो बा समय पे मैं भात बनाए रही थी और वहाँ में मैं एक चावल निकाल के देख रही थी कि भात पूरी तरह पको है कि ना है। जाको मतलब कि मैं एक चावल देख के ही जान जाती कि पूरा चावल पके हैं कि ना है, अर्थात चावल के संसार में घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप रह गई। राजा सारी बातन को अर्थ जान चुको हो तो माने लड़की की बुद्धिमानी भरी बातन ते आश्चर्य में डाल दियो। फिर राजा ने कहो कि बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, एक बात समझ में न आई कि यह सारी बातें तुम मुझे कल चौनाए बताई, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। लड़की हंस के बोली, मैं तो बता चुकी हती कि कल जब आप आए हते तो मैं भात बनाए रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातन को मतलब समझाती तो भात गीलो है जातो, चावल या तो जल जातो या ज़्यादा पक जातो, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर कल कोई बात अगर अपने घर बारे इनको बताती कि राजा ने कर्ज माफ़ कर दियो है तो वे मेरी बात को विश्वास ना करते। आज स्वयं आपके मुँह से सुन के जहाँ इन्हें जाको विश्वास है जागो, वहीं वो खुशी होगी। राजा लड़की की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न भयो। माने अपने गले से मोतीन की माला निकाल के बैद्यते भाई कही, कहो कि बेटी, यह तो अपनी चतुराई को पुरस्कार, तुम्हारे पिताजी को कर्ज तो मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। अब तुम्हें और तुम्हारे घर वाले को मोते कोई बहानों बनाए की जरूरत ना है। अब तुम लोग निश्चित है कि रहो, अगर फिर भी कभी काऊ चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक है कि मोते कहियो। इतनों कह के राजा लड़की को आशीर्वाद दे के लड़की के परिवार वाले इनको घर वाले इनको खुशी से गले लगाए के चलो गयो।
1: अभी आपने जो ब्रज लोक कथा सुनी, लड़की की चतुराई, कथाकार है अशोक कुमार। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा में एक लोकगीत माधुरी शर्मा और रमेश रावत के स्वर में।

रमेश रावत और माधुरी शर्मा के युगल सुरन में अभी आपने ये लोकगीत सुनो और अब यही के संग ही आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
4: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
1: मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए। प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
2: हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरत विद्युत की सप्लाई हो। और
0: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने कहा, सेवा सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त, अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, कहा डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके अनुरोध के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से कोमल सेन, तूषण सेन, विनायक सेन और उनके परिवारीजन, गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठलाल सारस्वत, नेहा, रीनर, नीरज, निकेता और इनके माता पिता, गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके परिवारीजन, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल, इमलीपार मोहल्ला पेठड़ से शेख चांद, शेख फूर खान, शेख जकीये, शेख गुरफान और उनके परिवारीजन, आप हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर और उनके परिवारीजन, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और उनके माता पिता, कुमोद वन से रमेश चंद्र सेन, सुनील, रचना गब्बर और उनके परिवारीजन, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके माता पिता, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर और उनके परिवारीजन, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मेहलोत्रा, गव्या मेहलोत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद परी और जयपाल यादव, सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार और सोनम वर्मा, मलकापुर से संजय पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर और संजय कुमार चौहान, दरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए शहरयार की रचना, संगीत निर्देशक खय्याम, गायक स्वर आशा भोसले के, फिल्म का नाम उमराव जान।

आशा भोसले की आवाज़ में उम्र अफजान फिल्म की रचना आपने सुनी और अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। ये संदेश हमें भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। उच्चभट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष वन्या और

गोस्वामी, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटाड़े, गणेशपुर गंज डुंडवारा इट्टा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, सायमा फारूक, सरफरा शेख, गुलफरा शेख और बेबी मुस्कान, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर, पद्माटाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कौशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह और उनके परिवारीजन, गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन, बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव, वाणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, बिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया टूसी, आयुषी, अनुरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह और उनके मित्रगण और परिवारीजन, नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, असद अरहाम और उनके परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार और साथियों को फिल्म का नाम है कर्ज, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे किशोर कुमार और साथी फिल्म थी कर्ज। और अब आप सुनेंगे मना रोहदास, अनुराधा पौडवाल और साथियों को। फिल्म है राम लखन, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पसंद भेजने वाले श्रोता लाल माता, सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालावाड़ा, राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। बागरी मौला रटलाई, जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा और श्रीमती फुनदी भाई बागरी। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद और तरुण यादव। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टल्लू नायक और मधु नायक। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राया, चेतन मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। दादरीगढ़ भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर और विशाल नवालकर। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रेमला बंछोर। जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबिये। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। मधुबनी बिहार से भाई नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, जय और बीरू। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा और हर्ष आहूजा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल चेतन, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानू गोपाल, माहेश्वरी, प्रभालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश और उनके परिवारीजन। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश और संघई परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सबके लिए राम लखन फिल्म का यह गीत।

ये थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार, फिल्म थी मिस्टर नटवरलाल। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं, ओल्ड लिसनर्स राजनगर से रुद्र प्रताप गुप्ता, दादा ठाकुर, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, कुसुम गुप्ता, शारदा गुप्ता और रूपा इलाहाबादी। नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और उनके मित्रगण। तेलीपाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। आप हैं नेहरू चौक पैंठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशभद। राजनगर मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार और उनके मित्रगण। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

येथे कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी, फिल्म थी बाजीगर, गीत रानी मलिक का था, संगीत निर्देशक थे अनु मलिक। और अब ये सुनते हैं ए आर रहमान, फहीम अब्दुल्ला और इशरत कामिल को, फिल्म का नाम है तेरे इश्क में।

ये थे किशोर कुमार और अलीशा चनोय। फिल्म थी मिस्टर इंडिया, गीत जावेद अख्तर का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: समवेत स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परख रचनाएं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है खिलाड़ी 786। इस फिल्म के संगीत निर्देशक हैं हिमेश रेशमिया। पहले सुनिए इस फिल्म में हिमेश रेशमिया, विनीत सिंह, अमन त्रिखा और साथियों की आवाज़ में गाया ये गीत।

ये थे श्रीराम और श्रेया घोषाल, फिल्म थी खिलाड़ी 786। और अब इसी के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आपने खिलाड़ी 786 फिल्म के कुछ गीत सुने। संगीत निर्देशक थे हिमेश रेशमिया। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज

0: नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines.

ये थे अभिजीत, श्वेता शेट्टी और साथी, फिल्म थी सलाखें। गी समीर का था, संगीत निर्देशक थे दिलीप सेन, समीर सेन। और आइए अब सुनते हैं आनंद राज आनंद का लिखा गाया और संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है वेलकम।

ये थी अलीशा चनोय, फिल्म थी तिरदेव। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉ

0: डीके यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद।
0: साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
1: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलोबरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है, तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें, और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं, और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने चार पांच मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायोफोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम ICMR के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से हम ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्में पैदा करें, और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक, जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो ICMR का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि वे जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है, और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8-9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है, उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें कि आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम ICMR के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
0: जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खासतौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ ICAR की तरफ से कुछ काम हो रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में, जैसे जो आमतौर

0: पर जितने भी पोषक तत्व तो जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है, और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है, और मसूर की 2 तथा चना और फावा बीन की 1-1 किस्में हैं।
1: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है?
0: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले ये मानिए आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का जब किसान तक बीज जाता है तो उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको आईसीआर में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी भी बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक एनजीओ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीडर सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी NFSM में भी जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है, ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से और हमारे KVK जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय है, ICR के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल, तो ICMR और ICAR की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे। जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर DK यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर DK यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
0: धन्यवाद।
1: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल ICMR में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर प्रियंका बंसल, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है, कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे, तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
2: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहाँ बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाएं जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए।
1: जी
2: तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो जो ये सेहत मिशन है इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए, जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं, हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है जिसमें ICAR जो है वो अपने बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें
1: जी
2: बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हैं, और उन्हीं चीजों को हम, उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है, वो ICMR टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे, और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है?
2: सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं उससे हम धीरे धीरे कुपोषण

0: के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है,
1: जी
0: हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है।
1: जी तो जो स्वास्थ्य के मानक हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
0: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा, जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा
1: जी
0: है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
1: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में?
0: देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है। कि फसल तो बन गई, मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
2: खेल दर्पण।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिम्नास्ट

0: आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिम्नास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: आशीष जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता हैं वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
2: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा,
2: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है, तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
1: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है, या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
2: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
1: अच्छा।
2: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
1: जी,
2: और मेरे फादर को नहीं पता था। मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
1: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती जरूरी होती है। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला
2: जी,
1: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
2: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कंपटीशन था।
1: अच्छा।
2: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
1: जी
2: उस टाइम पे जूनियर की थी।
1: अच्छा।
2: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
1: अच्छा।
2: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
1: जी,
2: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था,
1: हाँ,
2: 2006 में ये हुआ, और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
1: अच्छा।
2: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था
1: जी,
2: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिम्नास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है, और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी, और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
1: अच्छा।
2: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीजों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है, बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश।

0: था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता
1: हाँ,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: निश्चित रूप से बड़ी बात होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में एक भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
0: देखिए अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पर अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा

0: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं,
1: जी
0: राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे बेल्जियम
1: अच्छा
0: में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता,
1: अच्छा
0: आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता।
1: जी
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे लिए उस समय वो जरूरी था, वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसा मैंने बोला उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे, तो वहां पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया, बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस था, क्योंकि
1: जी
0: जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो
1: बिल्कुल
0: चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रक्रियाएं कैसी रहीं?
0: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं,
1: जी
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा,
1: जी
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे, और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे, बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज आने लगे,
1: क्या बात है।
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लग रहा लोग आए हैं, बट लिटरली जब मैंने इंटर किया मुझे इतना क्राउड देखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था,
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया। निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है, तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स, जो आपकी एजुकेशन थी, वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिम्नास्टिक्स में जैसे मैंने बताया मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था,
1: अच्छा
0: तो क्या होता है नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी। जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला टूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में, उसको खेलने के बाद क्या होता है अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है, और जिम्नास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है,
1: अच्छा
0: शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था,
1: अच्छा
0: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं आपको बताऊं मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफी बैक की बात है, फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहां तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ उतनी
0: था,
1: पॉपुलरिटी
0: हाँ
1: नहीं थी इंडिया
0: पॉपुलरिटी
1: में।
0: नहीं थी, लेकिन जब मैं खेल के आया वहां से मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
1: कुल मिला के तालमेल बन गया
0: तालमेल बन
1: बन
0: गया।
1: गया। आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
0: जो यंग बच्चे हैं
1: जी
0: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
1: जी
0: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
1: अच्छा
0: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है,
1: जी, मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं, तो
0: हाँ
1: उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये भी मैं
0: देखिए
1: पूछना चाह रहा
0: मैं
1: था।
0: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूंगा जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की उपेक्षा

0: छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
1: अच्छा
0: देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो
1: जी
0: पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं, बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है,
1: जी
0: जिमनास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
1: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि
0: जी
1: वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है। ठीक
0: जरूर
1: है, चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: देखिए, जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना, ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है
1: जी
0: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ
1: जी
0: जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं करो, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर ये समय आपने अपने आप को मेहनत करके ढाल दिया तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
1: निश्चित रूप से आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है उससे हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो एक खेल है उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
4: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
3: जी।
4: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ, प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, यहीं प्रयागराज में।
3: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं, और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
4: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने अपने लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए।
3: जी, हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है वो क्या है?
4: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो थे
3: जी।
4: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए
3: जी।
4: और मेरे गुरु भी, अगर आप नाम ले रहे, मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बढ़िया हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
3: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। थ्रो खेल है चूंकि भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है, संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
4: हैमर थ्रो जो है ये एथलेटिक्स में गेम

थ्रो में जैसे चार थ्रो होते हैं जैव, तो उस थ्रो में कैटेगरी होती है हैमर थ्रो। इसको टेक्निकल की बात करते हैं, वर्ड का खुद की मोस्ट टेक्निकल इसका।

0: মানে ভূমিকা का चुनाव कर साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुझाव दी या निजी के द्वारा।
1: एक ऐसा जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत एडवांस है, बच्चों को उसको खेलने में मज़ा आता है, उनको देख अच्छा लगता है कि वो सोचना के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
0: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक जिससे आज के
1: आपकी परफॉर्मेंस आएगी तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल 7 साल 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे, जब आप तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में परफेक्शन, तो
0: जी,
1: हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
0: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है, वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं, और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा।
1: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एडवांस है, गांव के बच्चों को उसको खेलने में मज़ा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
0: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है।
1: तकनीक का तो इसमें इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं उसको स्विंग करते हैं तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज़ करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट उसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
0: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं, वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है इसका।
1: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है क्योंकि ये यूरोप से आया है, तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है।
0: जी
1: भारत में आप गर्मी का तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं
0: जी
1: जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था,
0: जी जी
1: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो वैसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
0: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है,
1: जी
0: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।
1: चुनौतियां तो बहुत हैं।
0: जी
1: पहली चीज तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज करने जा रहा है तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए।
0: जी चंद्रोदय।

0: एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
1: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े
0: जी
1: हेमंत हो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका,
0: जी
1: यूरोपियन थोर थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदरचुक साहब,
0: जी
1: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनके ट्रेनी भी। कोच थर्ड था और उनके ट्रेनी फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको मोबाइल पे और वीडियोज देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस, जो हमको सरकार ने मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया, वो
0: जी
1: जिंदगी में सबसे यादगार पल है हमारा।
0: और कोई अनुभव?
1: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं,
0: जी
1: अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं।
0: जी जी
1: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पे हम अपना बेस्ट करके गए। कई खिलाड़ी उन्होंने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहाँ बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहाँ हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो
0: जी
1: दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं। खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है।
0: जी चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं, तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीजों की भूमिका होती है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
1: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है,
0: जी
1: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
0: जी
1: आज असफल हुए हैं, कल न कल सफल होंगे ही। हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
0: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
1: एक हेमंत थोर खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा।
0: जी
1: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है नहीं, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था,
0: जी
1: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
0: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
1: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
0: जी
1: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को,
0: जी
1: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है, तो
0: जी
1: उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो
0: जी
1: आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी।
0: जी भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है।
0: जी
1: अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा।
0: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: घरांगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
3: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
4: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब,
3: एक ऐसा कार्यक्रम
4: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
3: विकास की बातें, संगीत की मिठास
4: और एक नए भारत की आवाज।
3: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
4: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
6: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
5: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
9: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पखावज पर बजाया ताल चौताल, वादा कलाकार हैं कृष्ण गोपाल शर्मा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ताल चौताल में पखावज वादन, वादक कलाकार थे कृष्ण गोपाल शर्मा। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए

0: सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षित कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb this.